0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is

0: தொடர்வது சமஸ்கிருதத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்ப்ரதி வார்த்தாஹ ஸ்ருயந்தாம். பிரவாச்சிகா நிதிஹி ஜா. अथ वार्ताः. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात महाराष्ट्र राज्ययोः एकदिवसीय प्रवासे स्थास्यति. वडोदरा नगरे आयोजित समारोहे प्रधानमंत्री 35,000 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां विविधानां संरचना विकास परियोजनानां शिलान्यासं राष्ट्राय समर्पणं च विधास्यति. सशस्त्रबलानां युद्धाभियानक्षमतां वर्धयितुं रक्षाधिग्रहणपरिषद

वाह क्या बात है, स्कूल चले हम। इस गाने को सुनते ही बचपन की वो सुबह, वो भारी बस्ता और दोस्तों के साथ का सफर आंखों के सामने तैर जाता है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं, जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो सिर्फ अकेला नहीं पढ़ता, घर में भी पढ़ाई का माहौल बनता है, उसके साथ पूरा परिवार, आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ती है। साक्षरता की असली खूबसूरती ही यही है कि यह अंगूठे के निशान को दस्तखत में बदल देती है और इंसान को

0: आत्मनिर्भर बनाती है। साक्षरता सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह तो वो चाबी है जो हमारे सपनों के बंद दरवाजों को खोलती है। और आज विश्व साक्षरता दिवस पर हम सभी की कोशिश यही होनी चाहिए कि देश का कोई भी कोना ज्ञान की इस रोशनी से अछूता ना रहे। इसी संकल्प के साथ कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम आज सवेरे के आज के अंक में मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया।
1: Namaskar Jaya, and Jaya, very true. Today is World Literacy Day. And have you ever imagined, Jaya, what life would be like if we could not read or write? Like reading a book, writing our name, understanding an important document, or knowing our rights. All of these are made possible through literacy. And every year, 8th of September, that is today, is observed as World Literacy Day to raise awareness about the importance of literacy and education and to promote learning opportunities for everyone. Dear listeners, literacy is not simply the ability to read and write. It is the power to understand, make informed decisions, express ourselves, and build a better future. An educated and literate person can transform not only their own life, but also contribute to the progress of their family, community, and country.
0: बिल्कुल, और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 1966 में यूनेस्को के 14वें महासम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। इस वर्ष इसका थीम है पृथ्वी और समृद्धि के लिए साक्षरता। यह दिवस हमें साक्षरता की अब तक की यात्रा और उपलब्धियों पर विचार करने का अवसर देता है।
1: जी बिल्कुल, एंड ऑन दिस वर्ल्ड लिटरेसी डे लेट अस मेक अ प्रॉमिस टू हेल्प स्प्रेड द लाइट ऑफ एजुकेशन एंड सपोर्ट दोज हु आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज व्हेन एवरीवन कैन रीड everyone can rise. Let us light the lamp of education and remove the darkness of ignorance. Happy World Literacy Day.
0: और अब आइए सबसे पहले रुख करते हैं देश और दुनिया की प्रमुख खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का लोकार्पण भी होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विशाल परियोजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: इसके साथ ही प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर चर्चा होगी।
1: Arunachal Chief Minister Pema Khandu yesterday inaugurated the State Agriculture Information Hub cum Farmers Hostel in Naharlagun. The Agriculture Information Hub cum Hostel is expected to serve as a one-stop facility for farmers, providing information on modern farming practices, schemes and accommodation for visiting farmers. On the occasion, the Chief Minister also flagged off Matasya E-Vahini vehicles and e-rickshaws aimed at boosting fish vending and marketing infrastructure and promoting clean and sustainable transport for small traders and fish farmers. Speaking on the occasion, he said that Arunachal has immense potential in agriculture, horticulture and honey production. These policies will provide the roadmap to turn that potential into better livelihoods, stronger rural economies and a more prosperous Arunachal.
0: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई।

0: प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा।
1: Luxembourg Deputy Prime Minister and Foreign Minister Xavier Bettel has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council, UNSC, saying the body must be reformed to reflect the realities of the present global order. In an interview with the news agency, Mr. Bettel said India's size and global importance make its inclusion in an expanded Security Council necessary. He said the UNSC could be expanded to include major countries that currently do not have a permanent role, citing India and Brazil.
0: 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में भारत अब अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने अमरीकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 6G के साथ सेमी कंडक्टर, AI और डेटा सेंटर के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की।
1: The 4th United Nations Climate Week has opened in Azerbaijan's capital Baku yesterday, weeks before COP31. Governments, financial institutions, businesses and climate experts have come together for a 5-day meeting being held till the 11th of this month to deliberate upon climate action, finance, adaptation and transparency. The discussions are also expected to feed into preparations for COP31, where governments will face pressure to strengthen climate plans and demonstrate progress under the Paris Agreement. Baku Climate Action Week 2026 is being held alongside the UNFCCC gathering, bringing together investors, businesses, civil society groups and other non-state actors.
0: और अब बात खेलों की। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती पेश करेगा। महिला पैरा रिकर्व टीम के फाइनल में भावना और पूजा का सामना चीन से होगा। पुरुष पैरा रिकर्व टीम फाइनल में हरविंदर सिंह और विजय सुंडी स्लोवाकिया से खेलेंगे। पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार का मुकाबला इराक से होगा। वहीं मिक्स्ड टीम W1 फाइनल में स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी का मुकाबला चेकिया से होगा। और अब बात करते हैं महानगरों से जुड़ी खबरों का। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के समाचारों का। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इमारत का बिजली कनेक्शन हरिराम के नाम था, जबकि उसका प्रबंधन बेटा महेश देख रहा था। संपत्ति उर्मिला के नाम दर्ज थी। तीनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जबकि महेश को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि परिवार गुरुग्राम में रहता है और हार्डवेयर की दुकान चलाता है। रविवार को मरम्मत के दौरान दशकों पुरानी यह इमारत ढह गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से एक और अपडेट है हमारे पास कि त्योहारों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख खाद्य बाजारों में जांच अभियान तेज कर दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के तहत करीब 2300 किलोग्राम खोया और मक्खन सहित अन्य उत्पाद जब्त कर नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग को लगातार जांच करने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: Moving on to Chennai Metro, the first news. The Indian Air Force has taken a significant step towards strengthening specialized security and air-based ground defense training in the Defense Force with the inauguration of IAF Ground Defense College at the Air Force Station Avadi near Chennai. The college was inaugurated by Air Marshal S. Sivakumar, Air Officer in Charge Administration, on 7th of September. The first ground combat course has also been commenced at the newly established facility. The second news from Chennai Metro, a Malaysian Airlines flight MH156 en route from Kuala Lumpur to Jeddah made a safe emergency

0: Emergency landing at Chennai International Airport on last evening following a technical failure mid-flight. All 186 passengers and crew on board the Airbus A330-200 are reported safe. And the last news that I have from Chennai Metro is IIT Madras has invited applications for its course on career guidance for students of classes 9 to 12, exposure to various fields to choose the right course. The Center for Outreach and Digital Education at IIT Madras is offering these courses in English and Hindi. Each course is an 8-week online learning combining pre-recorded lectures, live sessions, assignments and computer-based assessments. Students who complete the prescribed requirements receive an official e-certificate from IIT Madras code. The deadline to apply for this is October 26th cohort is 30th of this month. So all listeners, all students who are eager to be to participate in this, please do so before the deadline.
1: बिल्कुल. और अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर. आज से शुरू हो रहे 62वें एपीएनआईसी सम्मेलन के लिए मुंबई में 600 से अधिक इंटरनेट विशेषज्ञ, नीति निर्माता और प्रौद्योगिकी नेता एकत्रित होंगे. 3 दिन के इस सम्मेलन के दौरान इंटरनेट के भविष्य को आकार देने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा होगी, जिनमें एआई संचालित सेवाएं, नेटवर्क स्वचालन, साइबर सुरक्षा, रूटिंग सुरक्षा और इंटरनेट प्रशासन के मुद्दे शामिल हैं. एक और खबर है हमारे पास महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अपने DGMHADA ऐप पर डिजिटल गणेशोत्सव 2026 के नाम से एक प्रतियोगिता की घोषणा की है. यह प्रतियोगिता MHADA के विभिन्न संभागीय बोर्डों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गणेश मंडलों के साथ साथ अपने घरों में गणेश उत्सव मनाने वाले MHADA निवासियों के लिए भी खुली है. प्रतिभागियों को ऐप पर पंजीकरण करना होगा और फिर अपने गणेश उत्सव की थीम, सजावट और विशिष्टता को दर्शाते हुए अपने बप्पा की तस्वीरें या वीडियो अपलोड करने होंगे. विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार और स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे.
0: Moving on to Bengaluru, a cooperative sector seminar on the production and use of ethanol for the farmers was inaugurated by Maharashtra Agricultural Price Commission Chairman Pasa Patel in Bengaluru yesterday. He informed that a national farmers conference will be held in Mumbai on September 28 and 29 regarding the production and use of ethanol for the farmers. Former minister and sugar mill owner Murugesh Nirani said that they produce 1 lakh liters of ethanol per day in 11 factories. That is 460 liters of ethanol can be produced from 1 ton of rice and 80 liters from 1 ton of sugarcane. He said before ethanol production, the price of maize per quintal was over 2,800 rupees, but today it is over 3,200 per quintal.
1: और अगर कोलकाता की बात करें तो आगामी अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के स्वर्ण जयंती संस्करण में वंदे मातरम के 150 वर्ष और आकाशवाणी कोलकाता के शताब्दी समारोह को प्रमुख विषयों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा. कोलकाता के पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र एकातन सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल पुस्तक मेले की सलाहकार समिति के संयोजक प्रोसेनजीत बख्शी ने इन विषयों की घोषणा की और उन्होंने स्पष्ट किया कि इस माह की 5 तारीख और सोमवार को समाचार पत्रों में मेले के भागीदारी के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन जो सलाहकार समिति से परामर्श किए बिना जारी किए गए थे वे प्रभावी नहीं होंगे.
0: And the last news that I have, Jaya, is from Hyderabad. Gale India Limited and Petronet LNG Limited, in collaboration with the MC Square Foundation and ITIC Incubator of IIT Hyderabad, organized the MC Square Plus Ignite Hyderabad Connect on September 7, 2026 at the IIT Hyderabad campus. The event brought together energy sector leaders, academia and startups to foster technological self-reliance with a key focus on digital asset management through artificial intelligence, machine learning and robotics. And Jaya, while delivering the keynote address, former Bank of Baroda CMD Dr. Anil K. Khandelwal stated that innovation dies quietly in fearful organizations, emphasizing that

0: True transformation relies on experimentation and customer centricity. GAIL Chairman and Managing Director Shri Deepak Gupta highlighted India's dual challenge of meeting rising energy demands while transitioning to cleaner energy sources.
1: और अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में भी आज बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश का अनुमान है। शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगर बात करें जॉय सिटी कोलकाता की, तो वहां भी बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। शहर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं रेनू से।
0: थैंक यू जया। चेन्नई विल हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, वेल द मैक्सिमम इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 36 degrees. Bengaluru will have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be around 20 degrees Celsius, where the maximum may reach 32 degrees Celsius. And Hyderabad will also have partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The minimum temperature will be around 24 degrees Celsius, while the maximum may reach 33 degrees Celsius.
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिक्र करने का।
0: So beginning with the year 1504, on this day, that is the 8th of September, Michelangelo's famous sculpture David was unveiled in Florence, Italy. In 1941, the siege of Leningrad began during the Second World War as German forces encircled the Soviet city on this day.
1: और आज ही के दिन 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली ने मित्र राष्ट्र के साथ अपने युद्ध विराम की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी।
0: In 1944, Germany launched the first V-2 rocket attack on London, marking the first use of a long-range ballistic missile in warfare.
1: आज ही के दिन वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में हिंदी में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भाषण दिया था। वहीं 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पुनर्निर्मित कर्तव्य पथ, जिसे पूर्व में राजपथ कहा जाता था, उसका उद्घाटन किया। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज के हमारे सबसे पसंदीदा और आखिरी सेगमेंट का, जिसमें हम याद करेंगे कि आज के दिन किन महान विभूतियों की जन्मदिन है, कब उनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के महान संगीतकार, गीतकार, गायक और फिल्म निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को। आज उनकी जन्म शताब्दी है। वे एक ऐसे कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और खुद ही गाते थे। खास बात यह है कि भूपेन दा का संगीत सिर्फ मनोरंजन का नहीं था, बल्कि वह समाज का आईना था। उनके गीतों में शोषितों का दर्द भी था और मानवता की पुकार भी। जब वे गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात ब्रह्मपुत्र नदी गा रही हो। आइए सुनते हैं फिल्म महात्मा और उनके गैर फिल्मी एल्बमों का यह कालजयी गीत, जो आज भी हर भारतीय की आत्मा को झकझोर देता है।

सीधे दिल में उतर जाता है। श्रोताओं, भूपेन दास ने असमिया संगीत को वैश्विक पहचान तो दी ही, साथ ही हिंदी सिनेमा को भी अपनी धुनों से समृद्ध किया। फिल्म रुदाली में उनके द्वारा संगीतबद्ध किया गया एक गीत आज भी विरह और दर्द की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति माना जाता है।

कला और संस्कृति में भूपेन हजारिका जी के अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। कहा जा सकता है कि उन्हें कला जगत के लगभग सभी सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया गया। आज ही जयंती है सुरों की मलिक का, वर्सेटाइल क्वीन और सदाबहार पार्श्व गायिका आशा भोसले जी की।

आशा भोसले जी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने कभी खुद को किसी एक दायरे में नहीं बांधा। उन्होंने चुलबुले गानों से रोमांटिक गीतों और शास्त्रीय संगीत तक हर विधा में अपनी अमिट छाप छोड़ी। जब संगीतकार खयाम ने उन्हें फिल्म उमरा जान के लिए चुना तो उन्होंने गजल गायकी को एक नया मुकाम दे दिया। आइए सुनते हैं उनकी मखमली आवाज में सजी यह अमर गजल।

तो जिस तरह के अभी हमने उनके गाने सुने तो कह सकते हैं कि एक तरफ उनकी आवाज में ठहराव था, दूसरी तरफ चुलबुलापन और एक गजब की खनक भी थी। दिलीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया फिल्म नया दौर का वह गाना तो आपको याद ही होगा जिससे आशा जी ने लोकप्रियता हासिल की थी।

0: आशा जी ने 20 से अधिक भाषाओं में 11,000 से ज्यादा गाने गाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया। संगीत और कला जगत में उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया।
1: And today is the birthday of Martin John Christopher Freeman.

0: who is an English actor and comedian known for portraying Bilbo Baggins in Peter Jackson's The Hobbit film trilogy, Tim Canterbury in the original UK version of sitcom The Office, Dr. John Watson in the crime drama Sherlock Holmes. But here we're going to listen to Martin Freeman talking about how he landed the role of Bilbo Baggins in the movie The Hobbit.
1: Whether you're James Cagney or me or whoever, you know, name any one of 100 actors, whoever you are and whatever you're bringing, it has to be real, right? So if you put James Cagney in a film now, he would seem kind of big, right? That's a strong flavour. I didn't disbelieve anything he ever said, right? Nothing, because he means it, right? So whether you're doing something that is up to 11 or something that's 2 or 3, as long as you invest it with the truth of that moment, hopefully the audience will go along with that and believe it.
2: आज हम कला जगत के एक ऐसे चमकते सितारे को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने पर्दे पर तो देवताओं के राजा इंद्र का वैभव जिया। हम बात कर रहे हैं हिंदी और पंजाबी फिल्मों के जाने माने अभिनेता सतीश कौल की। आज उनकी जयंती है। बीआर चोपड़ा की कालजयी महाभारत धारावाहिक में देवराज इंद्र की भूमिका निभाकर वे घर घर में प्रसिद्ध हुए थे। उस धारावाहिक का एक दृश्य आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है, जब युद्ध भूमि में गुरु द्रोणाचार्य क्रोध में आकर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने जा रहे होते हैं, तब देवराज इंद्र स्वयं प्रकट होते हैं और एक राजा होकर भी गुरु के प्रति अगाध सम्मान दिखाते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं।
3: हे आचार्य, मैं यहाँ पर सब देवताओं का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। मेरी आपको उन सब की ओर से प्रार्थना है कि आप दिव्यास्त्रों का प्रयोग ना कीजिए। यही सब ऋषियों की भी इच्छा है। दिव्यास्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए होते हैं।
0: And today is the birth anniversary of James Charles Rogers, who was an American singer, songwriter and musician who rose to popularity in the late 1920s. Widely regarded as the father of country music, he's best known for his distinctive rhythmic yodeling. And here we are going to listen to him singing Waiting for a Train with his yodeling in it.

0: आज सवेरे के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: एंड स्टे ट्यून्ड डियर लिसनर्स फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री

0: मंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे तीन मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की तीन रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
3: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
4: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजवेश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं, जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
3: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी पदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद

0: परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, एमसीडी अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, हॉर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today. To also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests 3 members of family that owned collapsed building in Satyaniketan area of national capital. And India set to feature in 4 gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Gujarat, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara. Mr. Modi will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the completion of the project. Talking to media persons at Ahmedabad Airport, Union Minister Ashwini Vaishnaw said this mega project has now been fully completed and will be formally dedicated to the nation by the Prime Minister.
3: Dedicated freight corridor.
4: The eastern and western dedicated freight corridors are a major backbone of the country's transformation infrastructure. After several years of work, this landmark project has now been fully completed and now will be dedicated to the nation by Prime Minister tomorrow. In 2014, the Prime Minister took up this project and resolved all the issues and challenges associated with it. Today, the project has finally been completed.
3: Jitni bhi usme problems thi, unko solve kiya aur ab complete hua.
2: Our correspondent has filed this report.
5: A major highlight of PM's visit will be the dedication of 3

0: शहर को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार को और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 6G

0: वर्ग के विकास की वैश्विक पहल में भारत अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। डॉ यादव संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का मार्ग खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न स्रोतों से ज्ञान हासिल करने के महत्व पर बल दिया। संस्कृत श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह मधुमक्खी कई फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को हर क्षेत्र से उपयोगी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और खेलों में अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेंगी, भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया से और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम इराक से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. More from our correspondent.
2: A major highlight of PM's visit will be the dedication of 3 key sections of Western Dedicated Freight Corridor spanning 326 route kilometers. Built at a cost exceeding 20,700 crore, this marks the full completion and operationalization of the Freight Corridor network. The Prime Minister will also flag off the freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umargam and New JNPT, along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail network. In addition, Mr. Modi will also lay the foundation stone for 3 railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees and 3 national highway projects costing around 1,780 crore rupees to ease the cognition and boost connectivity across Gujarat and Madhya Pradesh. He will also launch various civic and infrastructure projects of Gujarat government worth 2,600 crore, including a 110 megawatt floating solar plant at Kadana Dam and inauguration of PMAY housing units. Later, the PM will also visit Navsari to inaugurate the BJP's new AI-enabled high-tech office. Aparna Khun, Akashvani News, Ahmedabad.
1: In Maharashtra, the Prime Minister will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. Luxembourg Deputy Prime Minister and Foreign Minister Xavier Bettel has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council, UNSC, saying the body must be reformed to reflect the realities of the present global order. In an interview with the news agency, Mr. Bettel said India's size and global importance make its inclusion in an expanded Security Council necessary. He said the UNSC could be expanded to include major countries that currently do not have a permanent role, citing India and Brazil.
3: A reform of the Security Council where we would be able with a two-third majority to overrule veto, and then we can open the Security Council. If we say now we need to have 10 members because for me India belongs, it's for sure, look, the size of the country, the importance of your country, is it, why is India still not in? So or we take away the Security Council, which will be impossible because they won't agree, or we make it a bit bigger.
1: India has joined the United States and 24 other countries in an international initiative aimed at shaping the development of next generation 6G networks. Iran has highlighted India's role as a vital diplomatic hub ahead of Iranian President Masoud Pezeshkian's visit to New Delhi for the upcoming BRICS summit, scheduled to be held in New Delhi on September 12 and 13.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। लक्जमबर्ग में ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। ईरान ने उसकी संपत्तियों पर किसी भी हमले के जवाब में अमेरिका की ऊर्जा अवसंरचना पर कार्रवाई की चेतावनी दी। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का विषय है संभावना से प्रभाव तक, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय कनेक्टेड वैश्विक प्रणालियां। एक रिपोर्ट।
1: इस आयोजन में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। फेस्ट में नीति निर्माता, नियामक, बैंक, वित्तीय संस्थान, फिनटेक कंपनियां, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2020 से एक नेतृत्व मंच के रूप में उभरा है, जो नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक कंपनियों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक धारकों को वित्त के भविष्य पर चर्चा करने और उसे आकार देने के लिए एक साथ लाता है। इसका 7वां संस्करण मुंबई में 11 सितंबर तक चलेगा। प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर पेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक हैं। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
2: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान वहां के भारतीय समुदाय से बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात दूतावास के संरक्षण में अखिल भारतीय संचालन समिति के कार्यक्रम में हुई। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें

0: करेंगे। डॉक्टर यादव संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: श्री यादव राज्य में निवेश के अवसरों और सरकार की निवेशक हितैषी नीतियों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शारजा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अब्दुल्ला सुल्तान अल ओवैस से भी मुलाकात करेंगे। चैंबर के सदस्यों और भारतीय व्यवसाय और व्यावसायिक परिषद IBPC शारजा के प्रतिनिधियों के साथ एक गोलमेज बैठक भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। वे मध्य प्रदेश में निवेश करें सत्र में UAE के उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर यादव ने कल AIM कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र में भाग लिया और मध्य प्रदेश मंडप का उद्घाटन किया। उन्होंने विनिर्माण, फार्मा, पर्यटन, कृषि, लॉजिस्टिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के संबंध में UAE और रूस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें की। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और पर्यटन तथा औद्योगिक निवेश पर चर्चा की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है।
2: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ईरान ने चेतावनी दी है कि उसकी संपत्तियों पर अमेरिका के किसी भी और बड़े हमले से खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना पर जवाबी कार्रवाई हो सकती है। इन ऊर्जा अवसंरचनाओं में अमेरिकी तेल और गैस हित भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीवाफ ने कहा कि हमारी संपत्तियों पर हमला करोगे तो तुम्हें भी हमला झेलना पड़ेगा। ये चेतावनी सप्ताहांत में जहाजों पर हुए अमरीकी ईरानी हमलों के बाद आई है, जिससे तेल की कीमतें लगभग 6 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ये चेतावनी बढ़ते तनाव के बीच आई है। संघर्ष को समाप्त करने और खाड़ी क्षेत्र में सामान्य ऊर्जा प्रवाह बहाल करने के लिए किसी भी राजनयिक सफलता के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। इस बीच रविवार को वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने कहा कि ईरान जल्द ही खाड़ी में एक प्रतिबंधित क्षेत्र की घोषणा करेगा और जलडमरू मध्य के माध्यम से एक नया जहाजरानी गलियारा शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र वहां से शुरू होगा जहां से ईरान की अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी शुरू होती है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों को संभवतः ईरानी प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: ईरान ने अधिक पेट्रोल खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमत बढ़ा दी है। दिसंबर के बाद ये दूसरा मौका है जब पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत महीने में 110 लीटर से अधिक पेट्रोल खरीदने पर प्रति लीटर 1,00,000 रियाल देने होंगे, जो पहले की कीमत से दोगुना है। ईरान की कमजोर होती मुद्रा और घटती क्रय शक्ति के बीच ये निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार पेट्रोल महंगा होने से महंगाई और बढ़ सकती है। ईरान में महंगाई दर पहले ही करीब 67% है। ईरान में सस्ता पेट्रोल लंबे समय से लोगों के लिए अहम मुद्दा रहा है और कीमत बढ़ने पर पहले भी बड़े विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लायन ने ग्रीनलैंड के लिए 20 करोड़ यूरो के निवेश पैकेज की घोषणा की है। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ और ग्रीनलैंड के बीच सहयोग मजबूत करना और वहां निवेश को बढ़ाना है। ये पैकेज वर्ष 2026 और 2027 में लागू होगा। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम

W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। ईरान ने उसकी संपत्तियों पर किसी भी हमले के जवाब में खाड़ी क्षेत्र में अमरीका की ऊर्जा अवसंरचना पर कार्रवाई की चेतावनी दी। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पश्चिम में समर्पित माल ढुलियारे गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। इस दौरान रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत तथा सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1986 को आम सभा के 14वें सत्र में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया. उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड

0: राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं 2.5 लाख। साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा, आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं, जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए।
0: प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नेते और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डोसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 75,676 पर और निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 23,662 पर था। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Framework.

0: It has forecast heavy rainfall over Bihar, eastern Madhya Pradesh, eastern Uttar Pradesh, Odisha, West Bengal and northeastern parts of the country today. IMD said thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Telangana till tomorrow. Meanwhile, Uttarakhand, Chhattisgarh, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeast India are expected to witness thunderstorms accompanied by lightning during the next 2 days. In Bihar, receding water levels in the Ganga, Gandak, Kosi and Son rivers have brought some relief to flood-affected people. However, the situation remains serious with water levels still rising in some downstream areas. We have a report.
1: The water level of the Ganga has fallen by 12 to 25 centimeters at various places in Buxar, Bhojpur and Patna. However, a rising trend continues in several downstream areas of Munger and Bhagalpur. More than 27 lakh people across 13 districts are facing a severe flood situation. In Patna, 11 blocks are affected. Several panchayats in the Diyara areas of Maner, Danapur, Raghupur and Panapur remain surrounded by flood waters following the rise in the Ganga, Son and Punpun rivers. Connectivity between several villages in Mokama, Athmalgola, Fatuha and Bakhtiarpur and the district headquarters has also been disrupted. Chief Minister Samrat Chaudhary visited flood-affected areas of Vaishali and Saran. Nidhi Shree for Akashwani News.
0: In archery, India won 2 gold medals at the 2026 World Para Archery Series Leg 3 in Ahmedabad today. Harvinder Singh and Vijay Sundi clinched their 3rd consecutive World Para Archery Series title, defeating Slovakia 6-2 in the Para Recurve Men's Doubles Final. The duo had earlier won gold at the Bangkok and Nove Mesto stages, defeating Chinese Taipei and Ukraine respectively. In the Para Women's Recurve Doubles, Pooja Jatian and Bhavna Chaudhary settled for silver after losing 6-0 to China in the final. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat. Prime Minister Modi to inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. Bombay High Court refuses to quash summons issued to Congress MP Rahul Gandhi in 2019 defamation case over his remarks against Prime Minister Narendra Modi. IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, eastern Uttar Pradesh, Odisha, West Bengal and northeastern parts of the country today. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
3: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए

0: ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
0: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
0: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए AI सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। GFF वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। GFF 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। GFF में इस वर्ष एजेंटिक AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया।

0: किया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद यह याचिका दायर की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
1: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
2: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहा सुनी हुई शोर शराबे के ऊपर, उसके बाद वो कहा सुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल

0: और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
1: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: நேரம் 2:30 நிமிடம். ஆகாஷ்வாணி

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
2: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इस समय गुजरात के नवसारी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: 50 भाई बहनों ना माथा बधु न नाखी दे भाई भाई, ये तो इमनी सेवा करे थे, सरकारी व्यवस्था ना भाग रूपे लागेला थे, पण गंदगी न करवानी जवाबदारी तो आपणी छे के नहीं? आपणा घर में पण आपणी मां केटली बधी सफाई राखती होय, અને એકા છોકરો ઘરમાં કઈ કઈ ગંદુ કર્યા કરતો હોય તો માને દુઃખ થતું હોય કે નથી થતું? અને એટલા માટે સાથીઓ, હવે તમારે સૌરાષ્ટ્રના ભાઈઓ ઘણા રહે છે અહીંયા।
1: सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में आईटीआई क्लस्टरों के लिए 735 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय वाली महत्वपूर्ण निवेश योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें राजस्थान के लिए 241 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 240 करोड़ रुपए से अधिक और तेलंगाना के लिए 254 करोड़ रुपए की निवेश योजना शामिल है। इसे प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतु की 5वीं राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। बम्बई उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके टिप्पणियों को लेकर 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर

0: राहुल गांधी की 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायलों से आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के पुरस्कार विभिन्न भाषाओं, विधाओं और सिनेमाई रूपों में विविधताओं का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया जाएगा, भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म और रामनामी को ज्यूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र चुना गया है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने आज 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। वहीं तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने पुरुष डबल्स के फाइनल में इराक की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara in Gujarat. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. Mr. Modi also flagged off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umargaon and New JNPT, along with the new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail grid. Addressing the gathering, the Prime Minister emphasized that India has emerged as a global manufacturing hub, now producing its own advanced train and metro coaches. He highlighted the rapid transformation of India's transport and logistics sector, calling the completion of over 2,800 kilometers of dedicated freight corridors a historic achievement for 21st century India and a testament to the nation's changing work culture.
2: आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: During the program, Mr. Modi also laid the foundation stone for 3 railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees. The Prime Minister participated in a massive public meeting in Navsari, where he received a warm welcome. In Mumbai, Prime Minister Modi will inaugurate Global FinTech Fest 2026, one of the world's largest and most influential annual FinTech conferences. The 4-day fest will conclude on 11th of September. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has informed that the progress of area coverage under Kharif crops has recorded more than 1,086 lakh hectare area as of 4th of this month. It added that the rice has been grown over more than 421 lakh hectare area, while total pulses were sown over more than 117 lakh hectare areas. According to the ministry, Shri Ann and coarse cereals were cultivated in over 181 lakh hectare area. Additionally, the area cultivated with oil seeds was recorded with area coverage of more than 191 lakh hectares. It also said that more than 109 lakh hectare area has been brought under cotton cultivation. The ministry informed that sugarcane was grown on more than 58 lakh hectare area. The government has approved strategic investment plans

0: Together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Namaskar, main hoon Kailash Kher. और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं मैं हूं आपका कैलाश खेर
3: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना हर संकट का समाधान है भारतीय सेना भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: along with degrees in civil, electrical, mechanical or electronics engineering and 12 years of professional experience, including at least 5 years in project management. Applications in the prescribed proforma, duly forwarded through proper channel and accompanied by tested copies of ACRs or PARs for the preceding 5 years, should reach the director, PGIMER, Chandigarh by 15th September 2026. Candidates should also furnish the requisite vigilance, disciplinary clearance and experience certificate. Incomplete applications or applications received after the closing date will not be considered. Candidates are advised to regularly visit the official PGIMER Chandigarh website. For further details, kindly refer to the website at www.pgimer.edu.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना की ओर से रोजगार समाचार दिनांक 27 जून से 3 जुलाई 2026 के पत्र में प्रकाशित भर्ती विज्ञापन में कुछ संशोधन किया गया है। अब रिक्तियों की संख्या और पद नाम इस प्रकार हैं: फोरमैन मेटल रिक्तियां 42, फोरमैन इलेक्ट्रिकल रिक्तियां 26, फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स और गायरो रिक्तियां 10, फोरमैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्तियां 14, फोरमैन मैकेनिकल रिक्तियां 33, फोरमैन मैकेनिकल सिस्टम्स रिक्तियां 14, फोरमैन हीट इंजन रिक्तियां 20, फोरमैन मशीन रिक्तियां 6, फोरमैन शिप बिल्डिंग रिक्तियां 36, फोरमैन प्लानिंग प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिक्तियां 4 और फोरमैन सिविल वर्क्स रिक्तियां 4। इसके अतिरिक्त ट्रेड्समैन पुरुष पद के लिए 75 रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 5 सितंबर से 11 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों अथवा किसी उच्च न्यायालय के पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदनाम है सहायक रजिस्ट्रार कंप्यूटर। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, इनमें से कोई एक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स डिग्री या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक डिग्री अथवा कंप्यूटर आईटी में बीई या कंप्यूटर साइंस में बीटेक या समकक्ष योग्यता। सहायक रजिस्ट्रार कंप्यूटर पद के लिए अन्य जानकारी, नियम, शर्तें, शैक्षणिक योग्यता आदि जानने के लिए देखिए वेबसाइट www.sci.gov.in। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन। इंजीनियर E1 कुल रिक्तियां 12, सहायक प्रबंधक E2 कुल रिक्तियां 4, उपप्रबंधक E3 कुल रिक्तियां 2, इंजीनियर E1 कुल रिक्तियां 3, अधिकारी E1 कुल रिक्तियां 1 और सहायक प्रबंधक E2 एक रिक्ति। इसके अतिरिक्त अधिकारी E1 की भी एक रिक्ति उपलब्ध है तथा अधिकारी साचिविक एडिशनल CMO CMO E5 पदों के लिए भी एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। लेखा अधिकारी E1 के लिए 3 रिक्तियां, सहायक प्रबंधक E2 के लिए 2 रिक्तियां, मुख्य प्रबंधक E6 के लिए एक रिक्ति और इंजीनियर E1 ग्रेड के लिए एक रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.rfcl.co.in। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कारपेंटर 2 रिक्तियां, इलेक्ट्रीशियन 3, फिटर 1, वेल्डर 1, पेंटर, मशीनिस्ट और टर्नर एक एक रिक्तियां। योग्यता, सामान्य विवरण और चयन हेतु साक्षात्कार से संबंधित विवरण के लिए देखिए टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट www.tifr.res.in/positions। भंडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण सलाहकार बैंकिंग के

0: एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है, देखिए वेबसाइट www.wdra.gov.in। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन अनुसूची ए महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका कॉरपोरेट मुख्यालय कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है। प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए आवेदन। प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए शैक्षणिक योग्यता, नियम, शर्तें, आरक्षण और वेतनमान आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.coalindia.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, शाम के 4:30 हुए हैं। वक्त है न्यूज मैगजीन परिक्रमा का, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे उनके क्षेत्र के खास समाचार। खेल गतिविधियां भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे और उन खास हस्तियों को भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। परिक्रमा के आज के अंक में मैं हूं नईम अख्तर और मेरे साथ हैं बहुत अच्छे शगुन में शगुन चोपड़ा।
4: नमस्कार and a very warm welcome to all our listeners. A very good day everyone. Today I'm very very thrilled and very excited to begin our program Parikrama on Akashwani Gold at 100.1 FM. Well, today my co-host is Naeem Akhtar, as we all know. And well, yes, as Naeem told us, there is a lot of interesting stuff that we have lined up for you for the next half an hour that consists of news, discussion segment, Dateline India. Very interesting. You have to listen to that, listeners. We also have reports and capsules, and there will be our tributes to the personalities to whom this day is dedicated especially, and that's towards the end of the program. This is our way of telling you all that you have to stay tuned for the next 30 minutes. फर्स्ट नईम, should we begin with the headlines?
3: जी मैं करूं।
4: Exactly, start with जी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है।
4: Prime Minister Modi to inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening.
3: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया।
4: IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, eastern Uttar Pradesh, Odisha, West Bengal and northeastern parts of the country today.
3: और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता।
4: And now this is our discussion segment, Dateline India. Today we are discussing and we are talking about something that touches almost every part of our lives, something that begins with a simple ability but can open countless doors. Today it's International Literacy Day.
3: जी, Literacy Day, और ये बहुत important भी है, ना सिर्फ हमारे level पर बल्कि पूरी दुनिया के level पर।
4: True.
3: जी, हम साक्षरता की बात कर रहे हैं, यानी पढ़ने लिखने और समझने की जानकारी का इस्तेमाल करने की क्षमता, और आज 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है।
4: And when we hear the word actually literacy, when we think about it, many of us, we immediately think of books, classrooms, notebooks, students sitting in the classroom, studying, looking at the teachers, learning the alphabet and the numbers. But literacy, it is so much more than that, Naeem.
3: Right, right.
4: And actually, it can determine whether someone can understand important information related to health or even apply for a job or access government services, properly manage their finances and also support their children's education and make informed decisions, critical thinking.
3: एक वक्त हुआ करता था कि जिस वक्त में ये कहा जाता था कि पढ़ लिख जाओ उसी को साक्षरता माना जाता था। फिर एक वक्त आया आपसे कुछ दशक पहले कि वही पढ़ा लिखा है जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि साक्षरता आज की दुनिया में जो है वो उन कौशलों में से एक है जो चुपचाप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती है। अपनी सुबह की दिनचर्या के बाद

0: बारे में ज़रा अगर हम सोचें, एक नज़र डालें, तो सोच के देखिए, सबसे पहले हम उठते हैं, अपना फ़ोन देखते हैं, कोई मैसेज पढ़ते हैं, खबरें देखते हैं, रास्ता देखते हैं, किसी प्रोडक्ट का लेबल पढ़ते हैं, और शायद ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं, सभी भी तो लिटरेसी की ज़रूरत है ना।
1: Well, that is true. So many practical applications on the daily basis, minute by minute,
0: minute by minute, right.
1: And all of these activities which you mentioned, which I mentioned, they require us to understand and use information. And actually, this is why literacy, it is considered a fundamental human right. Everyone should be literate, and it helps people access many other rights and opportunities. If we are literate, if we have knowledge of all the stuff that we mentioned, which includes education, employment, healthcare, and participation in society, only then we'll be able to access all these information or rights.
0: हाँ, और इसके महत्व को समझते हुए, जी, इसके महत्व को समझते हुए हमारी सरकार ने भी साक्षरता के लिए राइट टू एजुकेशन भी है ना, तो साक्षरता का अधिकार भी हमारे अधिकारों में से एक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इतिहास 1966 से शुरू होता है। इसी साल यूनेस्को ने अपनी 14वें जनरल कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाने का ऐलान किया था, और पहला इंटरनेशनल लिटरेसी डे 1967 में मनाया गया था।
1: इट्स ग्रेट दैट यू मेंशनड इट, एंड सिंस देन नईम September 8th,
0: यानी आज का दिन,
1: वेल राइट, हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल ओकेजन टू ड्रॉ आवर अटेंशन टू लिटरेसी चैलेंजेस, ऑल्सो एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन and celebrate the progress which has been already made around the world.
0: और साल दर साल ये मनाया जाता रहा है, लेकिन ये साल जो चल रहा है 2026 का साल, ये खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि इस साल अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत की 60वीं सालगिरह है।
1: 6 decades have passed since then, and over these 60 years the world has made significant progress in expanding access to education and thereby improving literacy worldwide, but progress does not mean that the journey is over.
0: बिल्कुल ठीक बात है। आज भी लाखों लोगों को पढ़ने लिखने की बुनियादी क्षमता हासिल करने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, इसलिए हमें उसका अंदाजा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप दूर दराज गाँव देहात में चले जाएं तो पता चलता है कि ये रुकावटें अक्सर बड़ी चुनौतियों से जुड़ी होती हैं, जैसे गरीबी, शिक्षा तक असमान पहुंच, लैंगिक असमानता, संघर्ष और मुश्किल सामाजिक आर्थिक हालात भी इसके शामिल है।
1: That is true. Gender inequality and other struggles as well. And according to UNESCO's 2026 education data refresh, let's turn our attention to that. The global literacy rate is approximately 88% among adults and 93% among young people. And these numbers certainly represent enormous progress that we have to mention.
0: जी ऐसा करते हैं, लेकिन इस तरह की काम ये होते हैं, लेकिन हमें एक ज़रूरी बात ये भी बतानी है कि सभी लोगों के साक्षर होने का लक्ष्य अभी तक भारत में कम से कम हासिल नहीं हुआ है।
1: गुड पॉइंट एक्चुअली।
0: जी,
1: people may struggle to read a letter, understand a health instruction or complete a form. Form filling, it's required nowadays a lot, and also find themselves, for themselves, for their children, for their friends, even for their family members, employment information and help to their children complete their school work, which is why literacy is not simply an education issue, it is also a social and economic issue. Don't you think so?
0: बिल्कुल बिल्कुल। social issue के बारे में मुझको ये याद आया कि अब से कुछ दशक पहले तक ये था कि अगर किसी ने अपने signature करने सीख लिए हैं, साक्षर करने सीख लिए हैं, तो उसको भी साक्षर में माना जाता था, है ना? अब मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि अभी भी कोई हो ऐसा, लेकिन अब नहीं लगता कि शायद अभी हस्ताक्षर करने किसी को ना आते हो।
1: And I think the numbers would have significantly reduced. That's what we can say.
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो पढ़ने लिखने में बहुत कुशल है, वो नौकरी का विज्ञापन पढ़ सकते हैं, आवेदन तैयार कर सकते हैं, काम की जगह पर दिए गए निर्देशों को समझ सकते हैं, और शायद साथ साथ, और शायद क्या, हमने तो बहुत लोगों को देखा है कि नौकरी के साथ साथ आगे की पढ़ाई भी करते हैं।
1: Nowadays, it's very common.
0: Very common. स्वास्थ्य की सेवा के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज समझ सकते हैं, अपने रुपए पैसे का हिसाब किताब रख सकते हैं और बेहतर ढंग से बातचीत कर सकते हैं।
1: एंड नईम, literacy can make a difference within their families as well. Parents who have stronger literacy skills, they can often play a greater role in their own children's education by helping them read, by helping them complete their homework, their project work, or communicate with teachers well what they want for their child, and thereby develop a love for learning.
0: जी इसीलिए किसी एक व्यक्ति की साक्षरता का असर उस व्यक्ति से कहीं आगे तक जा सकता है, ये परिवारों, समुदायों और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डाल सकता है. और काम की जगह को भी हमें भूलना नहीं चाहिए.
1: At workplaces.
0: हाँ, हम अगर 50s और 60s के जमाने की फिल्में देखते हैं

0: और शगुन अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। वहीं तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने पुरुष युगल के फाइनल में इराक की जोड़ी को 152-139 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जतयान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा।
1: Now in some business news, benchmark domestic equity indices ended in a negative territory for the second consecutive day. The Sensex declined 555 points to close at 75,578, while the Nifty shed 144 points to settle at 23,635. And for more such updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
0: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
2: On this very day in 1897, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak was charged for sedition for his criticism of the British rule in his Marathi newspaper named Kesari.
3: This was an important moment in India's political history as it marked the criminalization of dissent as a grand spectacle of a political trial.
2: Tilak was charged for the publication of two texts, Shivaji's Utterances, a poem, and an unsigned report on the June 1897 Shivaji festival at which Tilak spoke.
3: In 1897, Chapekar brothers shot dead two British officers, namely the collector of Pune, Mr. Rand, who was responsible for the plague measures, and a young military officer.
2: This incident caused intense indignation among the Europeans and in the British government of India. It was pointed out that the murders of the two officers were the direct result of the incitement caused by Tilak's speeches and articles.
3: Due to prosecution's narrow legal interpretation, the texts were reduced

0: भूपेन हजारिका बहुत बड़ी हस्ती थे और एक और बहुत बड़ी हस्ती की भी आज जयंती है, जिनका नाम है आशा भोसले, जो सिर्फ हिंदी फिल्मी गीतों के लिए ही नहीं बल्कि संगीत की पर्यायवाची मानी जाती हैं।
1: That is true.
0: जी, मशहूर पार्श्व गायिका रही हैं। उन्होंने फिल्मी और गैर फिल्मी जगत के लगभग 16,000 गाने गाए हैं और इनकी आवाज के प्रशंसक न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 800 से अधिक फिल्मों में 10,000 से ज्यादा गाने गाए। महान भारतीय गायिका आशा भोसले का नाम दुनिया में संगीत की 20 शीर्ष हस्तियों में शामिल किया गया है। उनकी भी आवाज में कुछ सुनते हैं।
2: बचपन में क्या होता है कि बड़ी बहन की नकल छोटी बहन करती है, तो दीदी जैसा गाती थी वैसा मैं गाती थी। लेकिन मैंने जब देखा कि दीदी लता मंगेशकर का नाम इतना बड़ा हो गया, तो उसकी जैसे गाने वाले को गाना कौन देगा, उसकी अपनी जगह कुछ नहीं होगी। लोग सब कहेंगे कि अरे बहन जैसा गाती है वो लता नहीं है, वो जैसा जो है वो मुझे लाइफ में पसंद नहीं है, मुझे चाहिए कि मैं खुद क्या हूँ, वैसा मेरा गाना मेरा होना चाहिए। तो फिर मैंने ये शुरू किया कि गाना दीदी कैसा गाती है उसको बिल्कुल अलग से निकल जाने का। तो बचपन में मैंने कैरमन मरांडा का गाना बहुत सुना था, पिक्चर देखते थे छोटे छोटे थे जब, तो कैरमन मरांडा गाती थी, मम मम मम मम कैरो मम मम कैरो शबा ला ला ला। वो सुन के हम बोलते थे कुछ अलग है, ये अपने जैसा नहीं, क्योंकि हम लोग क्लासिकल सीखते थे, तो इसको पकड़ो। फिर ऐसा वक्त आया कि एक गाना आया, मिर जान बाबा खान ला ला रोशन दान, तो बगैर पूछे मैंने रिकॉर्डिंग में गया, मिस्टर जॉन बाबा खान ला ला रोशन दान, ये जैसा किया तो अन्ना श्रीराम चंद्र चिल्लाते हुए, अरे अरे क्या किया तुमने, बहुत अच्छा है ऐसे ही करो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बोला कि अपना गाना थोड़ा सा अलग होना चाहिए।
1: Guinness Book of World Records acknowledged her in 2011 as the most recorded artist in the music history.

0: और दिल तो नहीं कर रहा है कि आशा जी की आवाज का साथ छोड़ा जाए, लेकिन वक्त कह रहा है चलिए। श्रोताओं, समय हो चुका है आज का परिक्रमा कार्यक्रम यहीं खत्म करने का। अनुमति दीजिए नई मख्तार और शगुन चोपड़ा को।
1: नमस्कार।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्षों को रोकने में मददगार सुझावों और विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है।
2: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज शाम 7:45 से रात 10 बजे तक मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
3: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री सहयोग साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 का

0: ஆகியோர். ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்ட் உரை வழங்குபவர் அர்ஷிதா. ஐ நவ் பிகின் கவிதை வழங்குபவர் தயன் சித்தா. 7:45 திரை இசை, 7:50 செய்தி கதம்பம், 8:10 திரை கானம், 9:15 ஸ்பாட் லைட், 9:30 சர்ச்சா காவிஷாக, 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ் நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்டீர்கள்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नईम अख्तर। श्रोताओ, भारत कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट केवल एक फसल या उद्योग नहीं है, इससे देश के करीब 40 लाख किसान परिवार जुड़े हैं और जूट मिलों तथा इससे जुड़े उद्योगों में लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में 76 लाख गांठ कच्चे जूट का उत्पादन हुआ और करीब 12,80,000 मीट्रिक टन जूट उत्पाद तैयार किए गए। इसी अवधि में भारत ने करीब 1,71,000 मीट्रिक टन जूट उत्पादों का निर्यात किया, जिसकी कीमत 3,155 करोड़ रुपए से अधिक रही। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत में जूट उत्पादन की शुरुआत कैसे हुई, समय के साथ ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बना और सरकार की नीतियों, तकनीक और नए उत्पादों के जरिए गोल्डन फाइबर को एक टिकाऊ और आधुनिक उद्योग के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रोताओ, भारत का गोल्डन फाइबर इंडस्ट्री यानी जूट उद्योग एक लंबे इतिहास से जुड़ा है। भारत में जूट के इस्तेमाल का इतिहास 3rd शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। ब्रिटिश काल में जूट का व्यावसायिक महत्व तेजी से बढ़ा, खासतौर पर सेना से जुड़े कामों में इसके इस्तेमाल के कारण जूट की मांग बढ़ी और बंगाल में बड़ी संख्या में जूट मिलें स्थापित हुईं। लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद जूट उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जूट उगाने वाले करीब 80% इलाके पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, जबकि ज्यादातर जूट मिलें भारत में रह गईं। यानी कच्चा माल एक तरफ था और उसे तैयार करने वाली मिलें दूसरी तरफ। इससे भारत में कच्चे जूट की कमी हुई। इसके बाद सरकार ने सितम्बर 1949 में ग्रो मोर जूट अभियान शुरू किया। किसानों को धान की जगह जूट की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बाद के वर्षों में सरकार ने जूट के लिए बाजार बनाए रखने पर जोर दिया। वर्ष 1987 का जूट पैकेजिंग एक्ट इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके जरिए जरूरी वस्तुओं की पैकिंग में जूट की बोरियों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिला और किसानों के लिए जूट का एक स्थिर बाजार तैयार हुआ। आज पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे आगे है, इसके बाद बिहार, असम, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य आते हैं। जूट की बुआई आम तौर पर मार्च और अप्रैल में होती है और फसल लगभग 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। आइए अब समझते हैं जूट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
3: जूट जैव अवक्रमणीय यानी प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाला और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला फाइबर है। ये तेजी से बढ़ता है, आसानी से उपलब्ध है और इसकी लागत भी अपेक्षाकृत कम है। इसके रेशे मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इनमें नमी सोखने की क्षमता होती है और जूट से बने उत्पादों में तापमान और आवाज को रोकने जैसी उपयोगी खूबियां भी पाई जाती हैं। इसी वजह से जूट का उपयोग खेती, निर्माण, उद्योग, सजावटी सामान और कपड़ों में भी हो रहा है। जूट को दूसरे प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के साथ मिलाकर भी नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। जूट की एक और खास बात है जिसका संबंध सीधे हमारे खानपान से है। जूट के पत्तों को अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में सब्जी के रूप में खाया जाता है। जापान में भी जूट की पत्तियों को स्वास्थ्य से जुड़े खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम और आहार फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जूट की पत्तियों से एंटीऑक्सीडेंट हर्बल ड्रिंक और स्वास्थ्य से जुड़े दूसरे उत्पाद बनाने की तकनीक पर भी काम हुआ है। जूट के आधुनिक इस्तेमाल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जूट जियोटेक्सटाइल। जूट जियोटेक्सटाइल यानी जूट से बना ऐसा कपड़ा जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण और मिट्टी के कटाव को रोकने जैसे कामों में किया जाता है। इसे खास तरीके से बुना जाता है, इसकी सतह खुरदरी होती है और शुरुआती दौर में इसकी पकड़ मजबूत होती है, इसलिए इसे ढलानों, सड़क किनारे की मिट्टी, नदियों के किनारों और नहरों जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जूट का इस्तेमाल अब केवल पैकेजिंग के लिए नहीं हो रहा, ये ऐसे बुनियादी ढांचे का भी हिस्सा बन रहा है जिसमें पर्यावरण और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश

0: की जाती है।
1: श्रोताओं, ऐसे समय में जब दुनिया प्लास्टिक और दूसरे कृत्रिम पदार्थों के टिकाऊ विकल्प तलाश रही है, तब जूट की उपयोगिता और बढ़ रही है। साथ ही जूट के लिए नए बाजार और नए अवसर तैयार हो रहे हैं। इसका फायदा किसानों और जूट से जुड़े उद्योगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। यही वजह है कि सरकार का ध्यान केवल जूट का उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। कोशिश ये है कि किसान से लेकर बाजार तक जूट की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत किया जाए।

0: पर काम किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि इन सरकारी प्रयासों से जूट उद्योग में क्या बदलाव आया है और इसका असर किसानों, कारीगरों और उद्योग तक किस तरह पहुंच रहा है।
1: जूट किसानों के लिए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कच्चे जूट का MSP 5,925 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ये अखिल भारतीय औसत लागत के मुकाबले करीब 61.8% का लाभ देता है। MSP पर खरीद के लिए जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। जब बाजार में जूट की कीमत MSP से नीचे जाती है तब JCI किसानों से सीधे जूट खरीद सकती है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में डिपार्टमेंटल परचेज सेंटर्स बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा में ऐसे करीब 110 केंद्र काम कर रहे हैं। नेशनल जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम जूट क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी योजना है। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इसके लिए 485.58 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका जोर जूट की खेती, किसानों की आय और जूट के नए उत्पादों को बढ़ावा देने पर है। इसी के तहत जूट आई केयर योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक खेती, बेहतर बीज, मशीनों और बेहतर रेटिंग यानी जूट के रेशे को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया के जरिए उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना है। जूट के रेशे को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के साथ मिलकर रेटिंग के लिए तालाब तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन जूट उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए केवल खेती बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है कि जूट से ऐसे उत्पाद बनाए जाएं जिनकी बाजार में अधिक कीमत हो। इसी सोच के साथ जूट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम के जरिए जूट की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। जूट रॉ मटेरियल बैंक छोटे उत्पादन केंद्रों, कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और MSMEs को नियमित और अच्छी गुणवत्ता का कच्चा जूट उपलब्ध कराने में मदद करता है। जूट के बाजार को मजबूत करने के लिए क्वालिटी और ब्रांडिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जूट मार्क इंडिया लोगो जूट उत्पादों की गुणवत्ता और ऑथेंटिसिटी देने का काम करता है। जूट स्मार्ट नाम का ई गवर्नेंस पोर्टल जूट की खरीद और फूड ग्रेन पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जूट बोरियों की सप्लाई को डिजिटल बनाने में मदद करता है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने JCI और नेशनल जूट बोर्ड के साथ मिलकर जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया है। रिमोट सेंसिंग और फील्ड डेटा के जरिए जूट की खेती की निगरानी की जाती है। भुवन जंप मोबाइल ऐप और पटसन वेब प्लेटफॉर्म के जरिए फील्ड लेवल इंफॉर्मेशन जुटाकर खेती से जुड़े फैसलों के लिए डेटा उपलब्ध कराया जाता है। समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
0: श्रोताओं, इन सभी प्रयासों को एक साथ देखें तो जूट उद्योग में बदलाव की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। पहला बदलाव है किसान के स्तर पर। MSP और सरकारी खरीद से किसानों को कीमत में सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती और मशीनों के इस्तेमाल से उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर है। दूसरा बदलाव है उद्योग के स्तर पर। जूट को केवल बोरी और पैकेजिंग तक सीमित रखने के बजाय जियो टेक्सटाइल्स, हैंडलूम और दूसरे उत्पादों के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। तीसरा बदलाव है छोटे कारोबारियों और कारीगरों का। जूट रॉ मटेरियल बैंक्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और मार्केट लिंकेजेस के जरिए छोटे उद्यमों को वैल्यू चेन का हिस्सा बनाया जा रहा है। यानी जूट की कहानी अब केवल खेत से मिल तक की कहानी नहीं है, ये किसान से शुरू होकर प्रोसेसिंग, छोटे उद्यम, महिला समूह, टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट्स तक पहुंचने वाली पूरी वैल्यू चेन की कहानी बन रही है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य गुजरातस्य वडोदरायां

0: पञ्चत्रिंशत्सहस्रकोटिरुप्यतोप्यधिक मूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतः। उक्तं च यत् भारतं वैश्विकोत्पादन केन्द्र रूपेण उदितमस्ति। मुंबय्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26-अधिक-2000तमस्य ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य उद्घाटनं विधास्यति। बॉम्बे उच्च न्यायालयेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रति 19-2000तमे वर्षे प्रदत्तं वक्तव्यं सम्बद्धे मानहानि प्रकरणे कांग्रेस सांसदस्य राहुल गांधिनः विरुद्धं प्रत्याख्यापितस्य समाह्वानपत्रस्य निरस्तीकरणं निराकृतम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य त्रिदिवसीय श्रीलंका यात्रायै कोलंबो नगरं सम्प्राप्तवान्। अपि च अहमदाबादे अनुष्ठीयमानायाम् ऐषमः विश्व दिव्यांगधनुर्क्रीडायां भारतेन 2 स्वर्णपदके 1 रजतपदकं च अधिगतम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य गुजरातस्य वडोदरायां 35,000 करोड़ रुपयों से अधिक मूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतः। प्रधानमन्त्रिणा पश्चिम समर्पित मालवाहक मार्गस्य 3 प्रमुखाः खण्डाः राष्ट्राय समर्पिताः, येन मालवाहक मार्गजालस्य पूर्णं परिचालनं सम्भविष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी न्यू सानन्द, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव तथा न्यू JNPT इत्येतेभ्यः स्थलेभ्यः मालवाहक रेलयानसेवानां हरितध्वजं प्रदर्श्य शुभारम्भं कृतवान्। तेन टाण्डा मार्गस्य वडोदरायाः च मध्ये नवीनयात्रिरेलसेवायाः शुभारम्भोऽपि कृतः। एषा सेवा अलीराजपुरस्य दूरस्थेषु जनजातीयक्षेत्रेषु राष्ट्रियरेलजालस्य सम्पर्कं स्थापयिष्यति। विशालजनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतं वैश्विकोत्पादनकेन्द्ररूपेण उदितमस्ति, तथा अधुना देशः स्वयमेव उन्नतयोः रेल मेट्रो चेत्येतयोः यानयोः कक्षनिर्माणं करोति।
1: आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमन्त्री उक्तवान् यदस्याः परियोजनायाः परिकल्पना 6-अधिक-2000तमे वर्षे कृता, किन्तु सा बहूनि वर्षाणि निष्क्रियावस्थायाम् आसीत्। तद्विपरीतं गतदशके द्रुतगतिना कृतस्य कार्यान्वयनस्य फलस्वरूपं राष्ट्रियापूर्तिव्यवस्था पूर्णतया परिवर्तितास्ति। अद्य अयं मालवाहकमार्गः द्रुतगत्या विकासमानस्य भारतस्य जीवनरेखारूपेण कार्यं करोति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् मालवाहनस्य यात्रिरेलमार्गेभ्यः पृथक्करणेन कार्यक्षमतायां महत्त्वपूर्णः परिष्कारः अभवत्। यात्राकाले महन्यूनतया इन्धनस्य पर्याप्तं संरक्षणं भवति, पर्यावरणे दुष्प्रभावः न्यूनीभवति, सम्पूर्णराष्ट्राय च द्रुततरा स्वच्छा च आपूर्तिव्यवस्था स्थापिता भवति।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। विकसित भारत के लिए हमें ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए जो सुगम भी हो और जमाने के हिसाब से जरा तेज भी हो।
0: कार्यक्रमावधौ प्रधानमन्त्री मोदी 97,000 करोड़ रुपयों से अधिक मूल्यानां 3 रेल विस्तार योजनानां शिलान्यासमपि कृतवान्। मुंबय्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 26-अधिक-2000तमस्य ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य अद्य उद्घाटनं विधास्यति। अस्य वार्षिकसम्मेलनस्य 7वं संस्करणमद्य समारब्धं सत् आगामिनि सितम्बर मासस्य 11-दिनाङ्के समाप्तिमेष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सामाजिक सेवां स्वच्छतां च प्रभावी दैनन्दिन आचरण रूपेण स्वीकर्तुम् अथ विकास योजनानां लाभं समाजस्य

0: Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, aur hamare saath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain desh ke jane mane अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
0: वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा.
2: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 23,635. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन, इनॉग्रेट्स एंड डेडिकेट्स टू द नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 35,000 करोड़ रुपीज इन गुजरात. Says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई गिरावट. सेंसेक्स 550 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी 23,635 दर्ज हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया. कहा, स्वदेशी उन्नत ट्रेन और मेट्रो कोच का उत्पादन कर भारत वैश्विक निर्माण हब के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आइए अब शुरू करते हैं घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन आज बिकवाली की गई और प्रमुख सूचकांक इस वर्ष जून के मध्य के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आकर बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 555 अंक यानी 0.73% नुकसान के साथ 75,578 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 144 अंक यानी 0.61% घाटे के साथ 23,635 दर्ज हुआ. हालांकि विस्तारित बाजारों में लिवाली कहीं अधिक तेज देखी गई सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.2% लाभ में रहा.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन टुडे, एंडिंग एट द लोएस्ट लेवल सिंस मिड जून. The Sensex declined 555 points or 0.73% to end at 75,578, while the Nifty shed 144 points or 0.61% to settle at 23,635. However, in the broader market of the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 and the Small-Cap 100 indices gained 0.2% each. Earlier, the markets opened lower and remained under pressure throughout the session as Brent crude prices edged closer to the $100 per barrel mark, heightening concerns over inflation and broader economic uncertainty.
1: नजर डालते हैं सेंसेक्स में शामिल कंपनियों पर जिनके प्रदर्शन में कहीं गिरावट कहीं तेजी देखने को मिली. सबसे पहले अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियां. आईसीआईसीआई बैंक को आज 2% का घाटा हुआ. एक्सिस बैंक के शेयरों में 1.7% की गिरावट आई. अल्ट्राटेक सीमेंट 1.2% नुकसान के साथ बंद हुआ. उधर लाभ कमाने वाली कंपनियों में सम्मिलित रही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसे 1.5% का फायदा हुआ. अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 1.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 0.8% लाभ के साथ बंद हुए.
0: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द बीएसई 14 आउट ऑफ 28 सेक्टर एज्ड डाउनवर्ड. अमंग द टॉप अंडर परफॉर्मेंस इंश्योरेंस एज वेल एज टॉप 10 बैंक्स फेल 1%. प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स ड्रॉप्ड 0.9% एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लॉस्ट 0.8%. इन कॉन्ट्रास्ट कैपिटल गुड्स एडवांस्ड 1.3%. Power gained 0.7% and healthcare as well as industrials added 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 2,009 advanced and 216 remained unchanged.

0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 34 पैसे कमजोर हुआ, 94.83 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कुल मिलाकर ठीक ठाक गिरावट हुई और जून मध्य के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है बाजार, किस अर्थ में ले रहे हैं कारोबार को?
1: देखिए मनोज जी, एक तो ये बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग मैं कहूँगा, क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, वो वापस फिर एक हाइटेंड मोड पर हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उसमें कोई ऐसा चिन्ह नहीं आ रहा है जिससे कि हमें लगे कि शांति किसी एजेंडा पे हो या कुछ उसका वजूद हमें नज़र आए, तो जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस एस्केलेशन में है। और जब क्रूड प्राइसेस एस्केलेशन में है तो उसका सीधा असर जो है पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर आता है, भारत के ऊपर आता है और जो भी इसके इम्पोर्टर हैं उनके ऊपर आता है। ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर ही बहुत काफ़ी असर होता है। तो उससे के मद्देनज़र मैं ये समझता हूँ कि जो अभी मार्केट में जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ रहा पिछले कुछ सेशंस में, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट बुक किया अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए कि ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी दिशा नहीं मिल रही है कि कोई पीस की वार्ता आगे कोई किसी एजेंडा में हो। तो एक तो ये, दूसरा जो एक जो इन्फ्लेशन को लेके कि जो इन्फ्लेशन अभी आने वाले टाइम में या तो राइज कर सकता है या फिर उसी जो हायर स्टिकी जोन में रह सकता है, जैसे कि यूएस का इन्फ्लेशन है 3.4% पे, तो उनके टॉलरेंस लेवल से काफ़ी ज़्यादा है, जिसे फेड आने वाले टाइम में क्या डिसीजन लेगा वो एक अनसर्टेनिटी जो है इन्वेस्टर्स के माइंड में है, जो भी कुछ ही दिनों में हमारे सामने आएंगे उनके रिजल्ट, जो भी फेड डिसीजन लेगा। और तीसरे नंबर पर जो एक ऐसा जो अनुमान था कि बहुत जल्दी मार्केट्स में एक तेज़ी आएगी, जब पीस हो जाएगा, जब कुछ ऐसी वार्तालाप होगी, तो वो सभी चीज़ों के ऊपर कोई ऐसा विचार नहीं।
2: सो व्हाई डिड द मार्केट फेल टू फाइंड सपोर्ट डिस्पाइट सेलेक्ट रिजिलियंस इन मिड कैप एंड डिफेंसिव सेक्टर्स?
1: मिस्टर लेक, बिकॉज पीपल आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स एट दिस जंक्चर, अपना एंटिसिपेटिंग द हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द कमिंग टाइम्स एंड द हाई इन्फ्लेशन एंड द अनसर्टेनिटी एट द ग्लोबल लेवल। दैट्स वाई इन्वेस्टर्स आर नॉट टेकिंग द लॉन्ग कॉल टू गो अहेड विद द इन्वेस्टमेंट्स। वेयर देयर इज सम प्रॉफिट, देन दे आर बुकिंग सम पार्शल प्रॉफिट और the full profit or far profit, but the profit booking is significantly high in the market at this juncture. That's why markets are significantly low to the level of June 2026. But going forward, if some peace process happens at the global level, then I believe markets will recover sooner than later.
2: So today the top 10 banks fell 1%, private banks index fell 0.9%, and the financial services lost 0.8%. So are banks vulnerable mainly because of risk aversion, or could high crude ultimately affect loan growth and asset quality as well?
1: I believe all these three factors are working, because when the crude prices rise, then the inflation trajectory also expands and go high, then the central banks are also in a mood of tough monetary measures. So that's why banking sector is not in that much comfortable position after observing such kind of developments at the global level, whether the West Asia or the Russia-Ukraine, their war is also intensifying. So that's why the situation is not in any direction. People are confused and they are taking their decisions to book the profit and to make some gains from the market.
2: So in contrast to what I just mentioned about banks and all going down, we also had pharma and healthcare attracting money today. What could be the reason? Is it defensiveness? Is it export potential? Or is it because rupee related benefits?
1: Yes, because this is a export oriented sector actually, jo pharma and Ayush and all these related activities,

0: like the technical stocks also. So these export-oriented stocks sometimes gain when the market declines. So that may be the reason that these stocks are showing the strength in the market.
1: So what does it say to you about the domestic investors being very confident when you see that the mid-cap has gained today? Does it show their confidence, or could that pocket face delayed profit booking if volatility
0: No,
1: persists?
0: Alekji, this is some kind of churning. When the people book their profits in the blue chips and then they shift to the other prospective mid caps, so that their investments are not out of the market. So that's why this is the shift from some profit booking in the blue chip companies, then the shift towards the mid cap, small and mid cap. So that churning is happening between the larger and smaller stocks.
2: यहाँ पर एक संक्षिप्त सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि रुपया कमजोर हुआ है, निसंदेह आज भी गिरावट हुई है, लेकिन रुपए के गिरने ने किस रूप से हमारे निर्यात को प्रोत्साहित किया है और किस रूप से प्रतिस्पर्धी बने हैं हमारे बाजार, बहुत संक्षिप्त में?
0: मनोज जी, जब रुपी डेसिलरेट होता है, गिरता है, तो उसका उसके जब तो प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स जो एक्सपोर्टर के लिए थोड़ा फायदा होता है, उनके
2: जी
0: जो
2: जी
0: प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, जिससे अर्निंग्स भी इंक्रीज हो जाते हैं.
1: SEBI chief is addressing the Global FinTech Fest Summit 2026 in Mumbai while we speak. This is live, so let's listen to him.
3: Reserve Bank has consistently viewed fintech as a valuable partner in building the financial system of the future, the regulatory sandbox, the Reserve Bank innovation hub, and our structural and continued dialogues with startups, fintechs, and other stakeholders all rest on the conviction that better policy emerges from continuous, open, and constructive engagement. We have encouraged self-regulation within the sector. We have supported the development of digital public infrastructure that fintechs can build upon. We have been open to new ideas and new players. We have promoted responsible innovation while safeguarding trust that is the very foundation of finance, and we will continue with this approach, guided by a vision to build a financial system that is safer, more trustworthy, more inclusive, fair, efficient, and supports economic growth and public welfare. Honorable Prime Minister, this festival is a testament to what is possible when policymakers, regulators, investors, financial intermediaries, and innovators share a common purpose. I, on behalf of all the participants, express a heartfelt gratitude to you for taking out precious time for this event.
2: I
1: Listening live to SEBI Chief Tuhin Kanta Pandey, who is speaking at the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीन अहम हिस्सों को देश को समर्पित किया, जिससे फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क का काम पूरा हो गया और अब ये चालू हो गया है. इस अवसर पर एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलावों का जिक्र किया. उन्होंने 2,800 किलोमीटर से अधिक लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने को 21वीं सदी के भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि और देश की बदलती हुई कार्य संस्कृति का प्रमाण बताया. प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है और अपनी खुद की उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच बना रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे नेटवर्क में 50,000 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच और 2.5 लाख वैगन जोड़े गए हैं. प्रधानमंत्री ने चिप टू शिप लोकल प्रोडक्शन के दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए कहा कि देश के भीतर एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर सप्लाई चेन बनाई जा रही है, जिसमें हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर भारी समुद्री

0: टेपिंग तक सब कुछ शामिल है।
1: लेट्स टेक यू लाइव वंस अगेन टू मुंबई वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज नाउ एड्रेसिंग द गैदरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026।
2: तीसरी बार सरकार बनने से लगी थी और ये हैट्रिक आप सभी के बीच आने से जुड़ी है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगातार ये मेरा थर्ड ईयर है। ये हैट्रिक बताती है कि विकसित भारत के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका काम कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, हर बार जब मैं यहां आता हूं तो मुझे पहले से ज्यादा युवा दिखाई देते हैं, पहले से ज्यादा एनर्जी अनुभव होती है, मुझे पॉसिबिलिटीज का दायरा एक्सपेंड होता दिखता है। ये साफ साफ लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ड्रीम्स और बोल्ड हो रहे हैं और इसलिए विकसित भारत के फ्यूचर को लेकर मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है। साथियों, फिनटेक की इस एनर्जी के बीच ही मुंबई में सांस्कृतिक ऊर्जा भी इन दिनों चरम पर है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है। हमारे यहां हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। मैं गणपति बापा को नमन करते हुए आप सभी को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री तीसरी बार पहुंचे और उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए नए विकसित हो रहे भारत के भविष्य के बारे में थोड़ी सी जानकारियां दी। हम समझना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन किस रूप में एक विश्व समुदाय को आपस में नज़दीक लाते हैं और ये जो फिनटेक फेस्ट है वह क्या आकार लेगा, हमारे आर्थिक तंत्र को, वैश्विक आर्थिक तंत्र को क्या योगदान देगा।
3: देखिए मनोज जी, जो फिनटेक है वो हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और वी आर प्राउड के हम भारत पूरे ग्लोबल लेवल पे लीडर हैं। हमारी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वी आर नंबर वन, 20 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं एक महीने में, एक बहुत बड़ी बात है जिसमें जो बड़े कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी पीछे हैं। तो ऐसे जो सम्मेलन है इससे एक तो हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो अप्रोच है वो पूरे विश्व में उजागर होती है कि भारत में किस तरीके की डेवलपमेंट्स हैं और भारत इन इन चीज़ों में आगे अपनी लीडरशिप बना के रखे हुए है। और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है, जो हम विकसित भारत की तरफ जो बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, जो अभी हमारे पास 20 साल और है हमें बड़ी ऊर्जा के साथ काम करने के, तो ये जो सेक्टर है चाहे वो फिनटेक है, एआई है, डिजिटलाइजेशन है, तो ये सभी सेक्टर जो न्यू इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं ये पूरी इकोनॉमी को गति दे रहे हैं, उसकी स्पीड को तेज कर रहे हैं, जो हमारे जिसकी वजह से हम देखिए अपना जो जीडीपी है 7.8% जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज पहले होती थी उनसे कहीं ज़्यादा हमारा जो ग्रोथ है वो कहीं आगे निकल गया है। अब चाइना का ग्रोथ है वो 4-4.5% के आसपास अटका हुआ है एंड वी आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारी जो रफ्तार है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो ऊर्जा है वो पूरे विश्व में अभी विजिबल है।
1: सो इन नटशेल, GFF 2026 सीक्स टू बिल्ड ऑन इंडियाज लीडरशिप इन डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मूव फ्रॉम पोटेंशियल टू इम्पैक्ट।
0: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आपको एक बार फिर से श्रोताओं को लिए चलना चाहेंगे गुजरात, जहाँ वडोदरा में एक बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। हमारा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आज देश को समर्पित कर दिया गया, इसके 3 अहम हिस्से हैं वो भी पूरे हो गए। किस रूप में ये सहायक होगा माल परिवहन के लिए और कैसे यह जो लॉजिस्टिक्स का हमारा

0: हमारा क्षेत्र है उसे कह लें योगदान देने वाला है।
1: देखिए मनोज जी, मैं इन कॉरिडोर्स को फ्रेट कॉरिडोर्स ही नहीं, मैं इनको ग्रोथ कॉरिडोर्स मानता हूँ
0: जी।
1: ये भारत की ग्रोथ कॉरिडोर्स है। जब भी कोई नए कॉरिडोर्स आते हैं तो भारत की जो ग्रोथ है और भी गतिमान हो जाती है। तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, जिस तरीके से हम हमारी जो रफ्तार है जैसे मैंने पहले बताया, तो और सुदृढ़ होगी और हमारी ग्रोथ जो है उसको आगे सस्टेनेबल बनाने में ऐसी हमें ग्रोथ कॉरिडोर्स और चाहिए जो हमें और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे।
0: यहाँ पर एक और तथ्य हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और खुद की उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच तक बनाने लगा है। किस रूप में देख रहे हैं आप हब बनने की स्थिति?
1: जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए अभी हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर मोबाइल एक्सपोर्ट्स में हो, वी आर द लीडिंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो जो पहले हम नेट इम्पोर्टर होते थे, जो मोबाइल नाम का नामो निशान नहीं था, हम सब कुछ ही 100% हम इम्पोर्ट कर रहे थे, तो अभी हम उसके बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग की ही देन है कि हमारी जो ऊर्जा जो हमारी मेक इन इंडिया से हमें मिली, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और PLI स्कीम, सभी ने हमें इतना सपोर्ट किया और हमारी जो विश्व में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं अभी वो विख्यात होने लगे हैं, जिसे हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बताते हैं कि आवर प्रोडक्ट्स आर इन डिमांड सिग्निफिकेंटली एट द ग्लोबल लेवल। जो एक्सपोर्ट्स है वो 13-14% के ऊपर ग्रो करना और मर्चेंडाइज 17-18% पे ग्रो करना एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा जो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम वैल्यू एडेड देखें, जो पहले चाइना कहीं आगे होता था तो अभी चाइना भी उससे पीछे है। हम मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है जिसमें वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से ऊपर है, 2 percentage point ऊपर हम जो ग्लोबल लेवल का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से ऊपर है। तो स्वाभाविक है कि हम एक आने वाले टाइम की एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं।
0: आइए आगे
2: बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे।
0: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA के रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में देश में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री वार्षिक आधार पर 17.51% बढ़कर 24,23,201 इकाई पर पहुंच गई। CNG हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक
2: अगस्त महीने में ही
0: EV जैसे वैकल्पिक ईंधन वाले पैसेंजर वाहनों की बिक्री पहली बार पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से आगे निकल गई और बाजार में ट्रांजेक्शन हुए 41.95%।
2: यानी
0: पेट्रोल वाहनों की हिस्सेदारी
2: हम यहाँ जितनी देर से बैठे हैं
0: जो ग्राहकों की पसंद में बड़े बदलाव दिखाता है। अगस्त में पैसेंजर वाहनों की बिक्री 16.14% बढ़ी, जबकि कमर्शियल वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 14.45% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही उल्लेखनीय बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में ऑटोमोबाइल की बिक्री शहरी इलाकों की तुलना में बेहतर रही है। शहरी बिक्री में 15.17% की वृद्धि हुई, जबकि आलोच्य अवधि में ग्रामीण बिक्री वार्षिक आधार पर 19.79% बढ़ी है। यहाँ पर बहुत संक्षेप में आपको आपसे ये प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या दिखा रहे हैं आंकड़े, खासतौर से जो ईवी की बिक्री बढ़ी है और ग्रामीण भारत में वाहनों की बिक्री अधिक बढ़ रही है?
1: देखिए मनोज जी, जो पैसेंजर व्हीकल्स है ये एक डिमांड इंडिकेटर है जिसे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड कितनी है। और सेकंड जो रूरल डिमांड, जैसे आपने बताया कि जो रूरल एरियाज में इनकी डिमांड और तेज गति से बढ़ी है, तो आने वाले टाइम में ये एक इंडिकेशन है कि हमारी जो डिमांड ट्रैजेक्टरी है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जो हमारा जो ग्रोथ है वो भी सुदृढ़ रहेगा। सो दिस इज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इन द कमिंग टाइम्स।
0: आइए लिए चलें श्रोताओं आपको वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां जापान का निक्की 225 1.7% बिकवाली के दबाव में नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.6% की कमी आई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो इस वर्ष पिछली तिमाही की तुलना में अप्रैल जून तिमाही में जापान के GDP में 0.4% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वार्षिक आधार पर देश की अर्थव्यवस्था में इस दौरान 1.4% की वृद्धि हुई। यूरोपीय बाजारों में ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.2% नीचे था। लंदन के फुटसी 100 में भी 0.1% की कमी चल रही थी। यहाँ पर अगले सप्ताह के जापान में केंद्रीय बैंक की बैठक होने वाली है, साथ ही जापान के GDP के जो आंकड़े आए हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, ये जो तेज वृद्धि यानी इसे हम कहें या किन अर्थों में ले?
1: देखिए जापान ने भी ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए बहुत एफर्ट किए हैं और उसी की वजह से ग्रोथ बड़ा स्ट्रांगली विजिबल हुई है, रिबाउंड हुई है
0: जी।
1: और जो

0: यस लिए गए हैं, मैं समझता हूं कि अभी आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है जापान की बहुत सुदृढ़ रहेगी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी
1: जी.
0: सो दिस इज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो.
2: Moving on, the U.S. stock markets remained closed yesterday on account of Labor Day. The Dow Jones Industrial Average declined 0.5%, the S&P 500 lost 0.4%, and the Nasdaq Composite fell 0.3%. This was in the previous session where the major U.S. indices ended lower, followed by stronger than expected jobs data. Very, very briefly, what are your expectations on the Fed's policy decision in the coming week, or rather towards the end of the week?
0: I think they will remain in a status quo mode. I don't see they are in a mode to increase the Fed rate or decrease the Fed rate, because their inflation is in a sticky zone. So they will also be in a wait and watch situation in the coming times. And West Asia crisis is the major driver of such developments.
2: Okay. Canada's retaliatory tariffs on $28 billion Canadian dollars worth of U.S. goods took effect today with duties of up to 50%. The tariffs target products including steel, furniture and clothing, while fresh fish and lobster were removed following pressure from Canada's seafood industry. The move comes after trade talks between Canada and the United States collapsed last week with no sign yet of negotiation resuming anytime soon. The global crude oil prices climbed to multi-week highs as Houthi attacks on Saudi energy facilities intensified concerns about disruptions in global oil supplies. Brent crude was trading 1.7% up at $98.67 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.4% up at $93.90 per barrel when reports last came in. What do you expect, Dr. Sharma, now that the oil is now towards $98?
0: Yes, considering the very tense situation in the Strait of Hormuz, so I believe the prices will remain elevated. Though the volatility will come in the coming times, the prices are in the rising mode at this juncture.
1: यानी किस रूप में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा बहुत संक्षेप में?
0: देखिए, जहाँ तक क्रूड का सवाल है, अगर वो $100 या इसके नीचे रहता है तो हमारी ग्रोथ के ऊपर कोई असर आने की संभावना नहीं है, हमारी ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी. हाँ, अगर इसमें बहुत तेज एस्केलेशन आती है तो हमारी ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती है.
1: भाई ये श्रोताओं, आपको लिए चलें सर्राफा बाजार. भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% बढ़त के साथ 1,53,077 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी भी थोड़ी सी तेज थी. इसके मूल्यों में 0.9% की बढ़ोतरी थी और इसके भाव 2,33,826 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रहे थे. और बस अब यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको डॉक्टर शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद देना
0: चाहेंगे. जी शुक्रिया मनोज जी.
2: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर शर्मा. बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 550 points, Nifty settles at 23,635. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat, says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. And global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि

0: भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर ए श्रेणी में कर दिया है। प्रधानमंत्री इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: भूमिका है, इसी अनुभव से सीखते हुए हमें फिनटेक की ताकत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ाना है। मैं आपको कैपिटल और क्रेडिट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। एक बहन है जो छोटी दुकान चलाती है, उसको हर दिन डिजिटल पेमेंट मिलता है। अब उसकी इनकम और खर्च में एक क्लियर पैटर्न दिखता है, उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। वो उस लेवल से आगे बढ़ चुकी है जहां कम कैपिटल भी काफी था।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्म युगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. The theme of GFF 2026 is Potential to Impact Agentic

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும்
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 7वें संस्करण को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम जैसी नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं. श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400

0: करोड़ से अधिक लेन देन हुए। उन्होंने बताया कि भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने फिनटेक कंपनियों से मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवस्था, डेटा के नैतिक इस्तेमाल के लिए मानक और प्रभावी नियामक व्यवस्था विकसित करने का आग्रह किया।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: देश की आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संघर्षों, अनिश्चितताओं और ऊर्जा तथा उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया का भारत पर भरोसा और मजबूत हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्ष को रोकने में मददगार सुझावों तथा विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देश के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई।
2: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC के बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान AI एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. The theme of GFF 2026 is Potential to Impact Agentic AI Tokenization Quantum Trusted Connected Global Systems for Inclusive Finance. Addressing the gathering, Mr. Modi said, India is taking its fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core.
1: हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे पहले से ज्यादा एनर्जी अनुभव होती है, पॉसिबिलिटीज का दायरा एक्सपेंड होता दिखता है।

0: coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Namaskar, main hoon Kailash Kher. और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं मैं हूं आपका कैलाश खेर
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना हर संकट का समाधान है भारतीय सेना भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
1: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
3: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
4: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019

इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंग क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ग्रोथ. सो पीएम मोदी हैज इधर इनोग्रेटेड और लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर रेलवे रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ मोर देन ₹35,000 करोड़. बट द हाईलाइट ऑफ टूडेज प्रोग्राम वॉज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, अ न्यू रेलवे लाइन एंड डबिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल एज सेवरल हाईवे प्रोजेक्ट्स. सो ऑब्वियसली दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर एम एट इम्प्रूविंग पैसेंजर एंड फ्रेट मूवमेंट, विच विल रिड्यूस द कंजेशन एंड इट विल स्ट्रेंथन द कनेक्टिविटी अक्रॉस गुजरात एंड मध्य प्रदेश. फॉर एग्जाम्पल, द थ्री सेक्शंस ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिटवीन सानंद एंड मकरपुरा, न्यू उमरगाम टू न्यू सफाले एंड न्यू सफाले टू जेएनपीटी मुंबई. सो विथ दिस सेक्शन बिकमिंग ऑपरेशनल, द एंटायर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज फुली ऑपरेशनल नाउ. सो इट इज अ डायरेक्ट रेल लिंक बिटवीन JNPT एंड गुजरात.

0: मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त भारत की आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंथन। आज का हमारा विषय बेहद गंभीर भी है और वह देश के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ भी, नशा मुक्त भारत, भारत का 3 वर्षीय एक्शन प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ अगले 3 वर्षों के लिए एक व्यापक रोड मैप सामने रखा है। इस योजना में ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई से लेकर अवैध ड्रग लैब को खत्म करने, फरार आरोपियों को भारत लाने, नशे की मांग कम करने और डी एडिक्शन सेवाओं को मजबूत करने तक कई पहल शामिल है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं SPYM यानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार। मंथन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू श्रेया जी।
1: डॉक्टर राजेश, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए अगले 3 वर्षों का एक स्पष्ट रोड मैप भी तैयार किया गया है, आप के तौर पर इस लक्ष्य को किस तरह देखते हैं और क्या 2029 तक नशा मुक्त भारत एक व्यवहारिक लक्ष्य है और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है?
2: ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और अच्छी बात यह है कि इसको उन्होंने मिशन मोड में लिया है और जो जो इस पे कॉन्टूर्स में जो इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है उन्होंने डाला है, से इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, बाहर से जो क्रिमिनल्स हमारे जो ड्रग इंडिया में लेकर आते हैं उनको पकड़ के लाना है, ट्रीटमेंट सेंटर स्टार्ट करना है, वॉलंटियर्स बनाने हैं, तो ये सारी चीज़

0: हैं, और ये अगर मिशन मोड में सारे मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स अगर जुड़ेंगे तो थोड़ा चैलेंजिंग तो है नेक्स्ट 3 ईयर्स में पूरे देश को नशा मुक्त करना, मगर कंफर्टेबली अचीव हो सकता है, मगर 29 तक नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, चूंकि मैं पिछले लगभग 40 सालों से इस सेक्टर में काम कर रहा हूं, मगर एटलीस्ट एक मिशन मोड में काम तो शुरू हुआ और वो बहुत बड़ी चीज है।
1: जी, इस एक्शन प्लान को 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित बताया गया है। तो वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर भारत को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
0: देखिए, ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं, हम इसको कोई ये नहीं कह सकते ये नंबर वन है या नंबर टू है ना। फॉर एग्जांपल, अभी पिछले महीने में भारत सरकार ने एक बड़ा क्रिमिनल है बसोया, जिसको दुबई से लाया गया, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग विद इन द कंट्री और बिटवीन कंट्रीज ये हो रहा है, और इसमें काफ़ी पॉजिटिव अब उसका रिजल्ट दिखने लग गया। विद इन द कंट्री जो जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो ड्रग पुशर्स हैं, जो ड्रग कार्टेल्स हैं, उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो रही है, और काफ़ी लोग अब इस धंधे से निकल रहे हैं जैसा हमें लग रहा है। अब इसका इम्पैक्ट तो समय पे ही मिलेगा। सो पहला जो है वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग, दूसरा इम्पॉर्टेंट है जिसको कहते हैं वो जो प्रीकर्सर एंड केमिकल ड्रग्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, जो ड्रग जो केमिकल ड्रग्स है, दो तरह के ड्रग होते हैं, एक होता है जो नेचुरल ड्रग होता है, जैसे गांजा है, भांग है, अफीम है, कोकीन है, ये सब नेचुरल ड्रग है, इसको नार्कोटिक्स ड्रग कहा जाता है, और जो जो केमिकल ड्रग है उसको साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो केमिकल ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली विद इन द कंट्री वो अवेलेबल है, तो उसको अगर आप जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं जो बना रहे हैं केमिकल्स, उसके ऊपर निगरानी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से ही कुछ ऐसे केमिकल पदार्थ निकलते हैं जिससे, जैसे फॉर एग्जांपल अफीम को प्रोसेस करने के लिए जिन केमिकल की जरूरत होती है वो भी हम ही बनाते हैं, और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे मेथामफेटामिन टाइप के जो केमिकल ड्रग्स हैं उसको भी बनाने के लिए केमिकल्स हम ही बनाते हैं, तो प्रीकर्सर्स को भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है जिससे कि वो ड्रग नहीं बन पाए जो अभी बाजार में अवेलेबल है, और जो केमिकल ड्रग्स हैं वो भी नहीं बन पाए जो अभी नया ट्रेंड पिछले 4-5 सालों से शुरू हुआ है। तो जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो पिलर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो यंग पॉपुलेशन है ये अब चूंकि ये स्टिमुलेंट टाइप का ड्रग है जो लोगों को अच्छा लगता है अगर इस तरह का ड्रग लेते हैं, फिर बाद में बहुत परेशानी होती है, इसका इलाज भी मुश्किल है जो केमिकल ड्रग्स हैं, जो मेथ टाइप के ड्रग्स हैं, एमडीएमए हैं, मगर ये ड्रग केमिकल ड्रग है और ये तेजी से फैल रहा है, तो इसके लैब्स को भी रोकने की जरूरत है, और उसके ऊपर काफी कार्रवाई पिछले 1 सालों में मैंने देखा है।
1: जी, जैसा कि हम बात करते हैं ड्रग्स की, तो डिमांड और सप्लाई दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें समझ में आते हैं। तो आपके हिसाब से क्या सिर्फ सप्लाई रोकना काफी है? क्योंकि क्या भारत को अब ड्रग्स पकड़ने के साथ साथ अगर हम देखें तो ड्रग्स की मांग क्यों पैदा हो रही है, इस सवाल पर भी उतना ही गंभीरता से काम करने की जरूरत है?
0: देखिए, आपने सही बोला, ये डिमांड एंड सप्लाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सप्लाई है तो डिमांड जनरेट होता रहता है, और अगर सप्लाई कम हो रहा और डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाता है, तो फिर सप्लायर नए तरीके से मार्केट में आता है ना। फॉर एग्जांपल, नार्कोटिक्स ड्रग की जगह अब जो केमिकल ड्रग्स आ रहा है उसका कारण यही है कि नार्कोटिक्स ड्रग को सप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, काफ़ी उसके ऊपर रोकथाम है, जो केमिकल ड्रग्स है उसको बनाना आसान है, और केमिकल ड्रग चूंकि मार्केट में आ रहा है और डिमांड है तो उसके लिए नया नया कंज्यूमर मार्केट में आ रहा है, कभी हो सकता है सप्लाई रिडक्शन पे ज्यादा हमें सफलता मिल सकती है और कभी हो सकता है डिमांड रिडक्शन पे ज्यादा सफलता मिलती है, बट दोनों को एक साथ लेके चलने की जरूरत है, और भारत सरकार ने इसके अलग अलग मंत्रालयों ने इसके ऊपर काफी काम करना शुरू कर दिया है।
1: सिंथेटिक ड्रग्स और नए तरह के नशीले पदार्थ तेजी से चिंता का विषय बन चुके हैं। आपके अनुभव में युवाओं को इन पदार्थों से दूर रखने के लिए स्कूल, विश्वविद्यालय, परिवार और सरकार, इन तीनों स्तरों पर क्या काम करने के लिए आवश्यकता है? मतलब बना सके?
0: देखिए, अच्छी बात यह है कि 99% बच्चे नशा नहीं करते हैं, और वो फैक्ट है, अलग अलग डेटा में वो दिखता भी है। दूसरी अच्छी बात यह है कि अधिकतर बच्चे अब स्कूल में हैं, तो स्कूल बेस्ड अभी भारत सरकार ने एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है नवचेतना। इसमें लगभग 10 लाख मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन हो रहे हैं, और वो 10 लाख 20-20 टीचर्स को ट्रेन करने जा रहे हैं, और ये प्रोसेस शुरू हुआ है, और इसका भी इनिशिएटिव माननीय अमित शाह जी ने लिया था, और ये प्रोग्राम स्कूल बेस्ड है, टीचर लेड है, तो

0: ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। दूसरा इनिशिएटिव होना चाहिए घरों के अंदर। परेशानी यह है कि अधिकतर माँ बाप को पता नहीं है कि मेरा बच्चा नशा करने लग गया या नशा में वो लिप्त हो रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो माँ बाप को भी सजग होने की जरूरत है।
1: सरकार ने देश में डी एडिक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाकर 1751 करने की बात कही है। आपके अनुसार इलाज और पुनर्वास को और प्रभावी बनाने के लिए किन किन स्तरों पर सरकार का फोकस जरूरी है?
0: ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी तक जो नंबर ऑफ सेंटर्स अवेलेबल थे मेरे ख्याल से 500 के आसपास था, और देश बहुत बड़ा है, और एक जो भारत सरकार का आंकड़ा है जिसको एम्स ने स्टडी किया था उसमें करीब 6 करोड़ लोग हैं जिनको आज इलाज की ज़रूरत है। तो ये अगर नंबर बढ़ा है 1000 जो भी आप नंबर बता रही हैं 751, अगर ये हो रहा तो ये सब वेरी पॉजिटिव स्टेप। समस्या दो है। पहली समस्या ये है कि लोग इलाज के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने परिवारजन को ट्रीटमेंट तक नहीं लेके जाना चाहते हैं, और उसमें स्टिग्मा एक बहुत बड़ा कलंक, एक बहुत बड़ा बैरियर है। तो सरकार को भी चाहिए, परिवार को भी चाहिए कि इस स्टिग्मा को एड्रेस करें, क्योंकि होता यह है कि अगर फादर को पता चला या मदर को पता चला कि मेरा बच्चा नशा लेता है तो वो उसको छिपाते हैं। जब वो छिपाते हैं तो धीरे धीरे वो समस्या और बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि घट रहा है। और दूसरी, बाय द टाइम उनको पता चलता है कि हाँ अब इसको इलाज के ले जाने की ज़रूरत है, तब तक शायद वो बच्चा इलाज के लिए अब तैयार नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टिग्मा को घटाने की ज़रूरत है। दूसरा, जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स खुले हैं वहाँ पे जो स्टाफ है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। देखिए, ट्रीटमेंट का 4 फेज होता है। पहला फेज जिसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशन का फेज, तो उसमें परिवार और काउंसलर्स की भूमिका होती है, टीचर्स की भूमिका होती है कि आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ। दूसरा फेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिटॉक्स का फेज। डिटॉक्स का मतलब जिसमें उसकी जो टूटन है, उसका जो विड्रॉल है, उसको मैनेज किया जाता है। तीसरा है रिहैबिलिटेशन का फेज। रिहैबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब है कि जब वो नशा करना शुरू किया था उसके पहले उसका जो लाइफस्टाइल था वो वापस लाइफस्टाइल उसको मिलना चाहिए और अटेंड करना चाहिए, तभी तो वो वापस सोसाइटी में और परिवार में रीइंटीग्रेट होगा। और चौथा उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी सपोर्ट, कि जब वो उसका इलाज हो गया, इलाज होने के बाद उसकी मदद करनी चाहिए कि वो रिलैप्स नहीं करे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो सरकारी जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स बन रहे हैं उसमें जितने भी हर लेवल के जो स्टाफ है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। और अमित शाह जी ने अपने वो जो चौथा स्तंभ है क्षमता निर्माण है, वो यही एग्जैक्टली, मतलब सप्लाई रिडक्शन में भी क्षमता निर्माण होना चाहिए और ड्रग ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन में भी क्षमता निर्माण होना चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें दो और मैं छोटी बात कहना चाहता हूं कि एक बड़ा पॉपुलेशन है जिसको, जो हमें दिख नहीं रहा है, वो है बच्चों का पॉपुलेशन, जो बच्चे नशा करना शुरू कर दिया है, और महिलाओं का पॉपुलेशन। तो इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशलाइज प्रोग्राम हो। स्पेशलाइज प्रोग्राम का मतलब है जो बच्चों का ट्रीटमेंट है वो एडल्ट के ट्रीटमेंट से बहुत डिफरेंट होता है। और महिलाओं का ट्रीटमेंट, चूंकि वो महिलाएं निकलना नहीं चाहती और परिवार निकलने नहीं देता है कि छिपाता है, तो ये जरूरी है कि दोनों के लिए स्पेशलाइज प्रोग्राम हो।
1: जी, सरकार ने 1,00,000 नशा मुक्त मित्र बनाने का भी लक्ष्य अपने सामने रखा है। आप इस पहल को किस तरीके से देखते हैं, और नशा मुक्त मित्र जो ये अभियान है इसको जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए ये किस तरह का योगदान दे सकता है?
0: देखिए, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि नशा आम बीमारियों से बहुत अलग है। और अधिकतर जो यंग बच्चे जब नशा करते हैं तो उसके संपर्क में कौन होता है? माँ बाप नहीं होते, टीचर नहीं होते हैं, उन्हीं के हम उम्र के लोग होते हैं। तो अगर वो हम उम्र वाले बच्चों को अगर हमने ट्रेन किया, उनको हमने ओरिएंट किया, एक प्रोग्राम है जिसको पीयर लेड इंटरवेंशन कहा जाता है, तो उसके माध्यम से अगर हम उन बच्चों तक पहुँचे जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिन्होंने इनिशिएट किया है कि साहब अभी हम थोड़ा थोड़ा लेना हमने शुरू किया है, तो ये जो 1,00,000 वॉलंटियर्स हैं, और ये 1,00,000 वॉलंटियर अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। NSS है, NCC है, माई इंडिया है, इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोग्राम भारत सरकार के चल रहे हैं उनके माध्यम से ये अचीवेबल है और ये होना भी चाहिए।
1: जी, अंत में डॉक्टर राजेश, मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि हम अक्सर नशे की समस्या को केवल कानून व्यवस्था या स्वास्थ्य का मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन इसके पीछे परिवार, मानसिक सामाजिक परिस्थितियां, बेरोजगारी, साथियों का दबाव और सामाजिक वातावरण जैसे कई कारण भी हो सकते हैं। अगर किसी परिवार का कोई सदस्य नशे की गिरफ्त में हो तो आपका सबसे पहला संदेश क्या होगा, और एक नशा मुक्त भारत बनाने में एक आम आदमी या आम नागरिक आज क्या भूमिका निभा सकता है?
0: बहुत लंबा सवाल है, संक्षेप में कहना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं बताऊं।

0: एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि परिवार अपने बच्चों को जाने, उनसे बात करें। आजकल बच्चे परिवार के साथ नहीं बात करते हैं, वो रील से बात करते हैं। उन्होंने कुछ अगर सोशल मीडिया पे डाला और अगर उनको थम्सअप नहीं मिला तो वो निराश होते हैं, वो परेशान होते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ये सारा गेम डोपामिन का है। अगर उसको डोपामिन स्पोर्ट्स से मिल रहा है, डोपामिन उसको परिवार से बात करने में मिल रहा है, अपने दूसरे जो फ्रेंड्स से उनसे बात करने में मिल रहा है, तो उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है। तो इन सबसे काटने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल और परिवार दोनों बच्चों को समझे, बच्चों के स्वभाव को समझे, बच्चे के बदलते हुए जो मानसिक स्थितियां हैं उसको समझे और उनसे बात करें।
1: जी, तो डॉक्टर राजेश, आपने हमें बड़े नशा की समस्या को सिर्फ एक कानून के नज़रिए से नहीं बल्कि रोकथाम, इलाज, पुनर्वास और समाज की भागीदारी, इन सभी पहलुओं से समझाया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू श्रेया जी।
2: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त भारत की आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि भारत और चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देश के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global FinTech Fest in Mumbai this evening.
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration and fintech systems should be new goal to reduce transaction cost in remittances. The Prime Minister urged stakeholders in the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities. The 4-day Global FinTech Fest 2026 has been held in Mumbai from today till the 11th of September. Earlier in the day, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara in Gujarat. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. Mr. Modi also flagged off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umbergaon and New JNPT, along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the

0: National Rail Grid. He also laid the foundation stone for three railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Colombo today on a three-day visit to Sri Lanka aimed at deepening bilateral defence and maritime cooperation. Mr. Singh was warmly welcomed at Bandara Naike International Airport by Sri Lankan Deputy Minister of Defence Aruna Jayasekara and Indian High Commissioner to Sri Lanka Santosh Jha. During his visit, the Defence Minister will hold talks with the Sri Lanka's leadership on various issues to further strengthen bilateral ties in mutually beneficial areas, including a strong maritime and defence partnership. Russia today said that it welcomes any peace efforts by India to end the Ukraine conflict, noting that Moscow's strategy aligns closely with New Delhi's position for a resolution through dialogue and diplomacy. Kremlin spokesman Dmitry Peskov made the remarks while addressing media at a virtual briefing in New Delhi this afternoon ahead of the BRICS summit. Mr. Peskov said they know the position of India on the Ukrainian conflict, and to a great extent it corresponds with their own position because they do want the solution to the Ukraine conflict by peaceful means, and Russia is open for this process. He said Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin will hold bilateral talks on the sidelines of BRICS summit later this week. The government has approved strategic investment plans with an aggregate project outlay of over 735 crore rupees for ITI clusters in Rajasthan, Uttar Pradesh and Telangana. It includes 241 crore rupees investment plan for Rajasthan, over 240 crore rupees for Uttar Pradesh and 254 crore rupees investment plan for Telangana. It was approved in the 5th National Steering Committee NSC meeting of the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through upgraded ITI's PM Setu. Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura, Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand, Nagaland and Odisha tomorrow. IMD has said the thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds hit Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh and Tamil Nadu and Puducherry and Karaikal for tomorrow. India bagged 5 medals, including 2 gold, 2 silver and 1 bronze on the penultimate day of Stage 3 of the World Archery Para Series in Ahmedabad today, with the men's teams winning the top honours. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashvani se Vishv Darpan ke saath, main Anjali. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के वैश्विक विस्तार और प्रेक्षण लागत में बजट पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई वार्ता में रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया, कहा इस मुद्दे पर रूस भारत के रुख से सहमत। सऊदी अरब में कई तेल सुविधाओं पर हुती विद्रोहियों के हमले में 73 लोग घायल और अहमदाबाद में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास की दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा है।

0: और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBC+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन कल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान एडमिरल स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। नौसेना प्रमुख न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के अधिकारियों और पेशेवर सैन्य प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। न्यूजीलैंड में एडमिरल स्वामीनाथन रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों और न्यूजीलैंड के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में राष्ट्रपति मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि बातचीत में भारत और बांग्लादेश के बीच साझा इतिहास, घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों और दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित किया गया। रूस ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत की ओर से किए जाने वाले किसी भी शांति प्रयास का वो स्वागत करेगा। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता बहुत सारे राजनेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री की होगी। रशिया और यूक्रेन की जो संघर्ष चल रही है इसकी बारे बात है। ये मुद्दा भी बहुत सारे मुद्दे जब द्विपक्षीय वार्ता होंगे तो बहुत सारे मुद्दे ऊपर उठ के आएंगे और उसमें एक ये मुद्दा भी रहेगा।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर यमन में लगातार हमलों के बाद हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। यमन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने आज कहा कि हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के शहरों आबा, खमीस, मुशैत, जाजान और नजरा में नागरिक और आर्थिक स्थलों को निशाना बनाया। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 73 नागरिक घायल हुए हैं। ये सऊदी अरब की संप्रभुता का उल्लंघन और उसके नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इसमें इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक और सीमेंट जैसे उत्पाद शामिल हैं। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस समेत 12 देशों ने आज घोषणा की कि वो वेस्ट बैंक में अवैध इसराइली बस्तियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये कदम कब्जे वाले क्षेत्र में फिलिस्तीनी गांवों पर इसराइली बस्तियों द्वारा कथित हमलों में वृद्धि के बाद उठाया गया है। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड,

आयरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन के विदेश मंत्रियों ने भी बस्तियों के साथ व्यापार सीमित करने की योजना बनाई है। मंत्रियों ने कहा है कि 12 देश उन बस्तियों से आने वाले सामानों पर राष्ट्रीय और यूरोपीय व्यापार प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अवैध हैं। उन्होंने कहा कि कुछ देश अपने राष्ट्रीय कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुरूप अन्य उपायों पर भी विचार कर रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने आज संसद में बोलते हुए इसराइल की सरकार पर वेस्ट बैंक में बस्तियों द्वारा किए जा रहे जातीय सफाई को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार से मानवाधिकार अधिवक्ता ईमान मजारी हाजिर और हादी अली चट्टा को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। एमनेस्टी ने कहा है कि दोनों को साइबर अपराध कानूनों के दुरुपयोग के आरोपों के बीच लंबे समय से जेल में रखा गया है। दोनों वकीलों को इस वर्ष 23 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके अगले दिन इस्लामाबाद की एक अदालत ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक अपराधों से जुड़े

0: रिहा करने की मांग की है। एमनेस्टी ने कहा है कि दोनों को साइबर अपराध कानूनों के दुरुपयोग के आरोपों के बीच लंबे समय से जेल में रखा गया है। दोनों वकीलों को इस वर्ष 23 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके अगले दिन इस्लामाबाद की एक अदालत ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक अपराधों से जुड़े कानून के अंतर्गत 10 से 17 वर्ष तक की सजा सुनाई थी। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। स्वाति ने व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के वैश्विक विस्तार और प्रेक्षण लागत में बचत पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई वार्ता में रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। सऊदी अरब में कई तेल सुविधाओं पर हुती विद्रोहियों के हमले में 73 लोग घायल और अहमदाबाद में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Harpreet Kaur with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi pushes for global expansion of UPI and saving remittance costs. Russia-Ukraine conflict among various issues to figure in talks between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin on sidelines of BRICS summit in New Delhi. Russia backs India's peace efforts to end Ukraine war, says Moscow aligns with New Delhi's position on the issue. Houthi strikes multiple oil facilities in Saudi Arabia, 73 people injured. And India won 5 medals, including 2 gold, at World Para Archery Series in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today called for expanding the global reach of India's Unified Payments Interface, UPI. He urged the fintech sector to connect the country's homegrown retail payment network, UPI, with payment systems in more countries and help the Indian diaspora reduce remittance costs. Mr. Modi stated this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai this evening. He said Indian UPI is now operational in 11 countries.
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: Lauding the country's remarkable GDP growth in the first quarter of current fiscal, Mr. Modi said, world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts.
2: Dunya conflicts aur uncertainty ke daur se guzar rahi hai aur isme bhi jab Bharat 7.8% se grow karta hai to duniya ko ek naya bharosa milta hai. भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
1: The 4-day Global Fintech Fest 2026 will conclude on Friday. The Russia-Ukraine conflict is expected to figure prominently in talks between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the BRICS summit later this week. The two leaders are expected to discuss a range of bilateral, regional and global issues during their meeting. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal stated this while briefing media in New Delhi today. He said Prime Minister Modi will hold bilateral talks with numerous leaders during the BRICS summit, which will be held on 12th and 13th of this month in New Delhi.

0: उद्घाटन पर प्रधानमंत्री
1: गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के चेयरमैन क्रिश गोपालकृष्णन जी, फिनटेक वर्ल्ड के सभी इनोवेटर्स, लीडर्स और इन्वेस्टर्स, देवी और सज्जनों, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में देश विदेश से आए सभी गेस्ट और डेलीगेट्स का मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि आज यहां एक और हैट्रिक लगी है। एक हैट्रिक तो 2024 में है, तीसरी बार सरकार बनने से लगी थी, और ये हैट्रिक आप सभी के बीच आने से जुड़ी है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगातार ये मेरा थर्ड ईयर है। ये हैट्रिक बताती है कि विकसित भारत के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका काम कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, हर बार जब मैं यहां आता हूं तो मुझे पहले से ज्यादा युवा दिखाई देते हैं, पहले से ज्यादा एनर्जी अनुभव होती है। मुझे पॉसिबिलिटीज का दायरा एक्सपेंड होता दिखता है। ये साफ साफ लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ड्रीम्स और बोल्ड हो रहे हैं, और इसलिए विकसित भारत के फ्यूचर को लेकर मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है। साथियों, फिनटेक की इस एनर्जी के बीच ही मुंबई में सांस्कृतिक ऊर्जा भी इन दिनों चरम पर है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है। हमारे यहां हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को याद

किया जाता है। मैं गणपति बापा को नमन करते हुए आप सभी को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, दुनिया के हालात क्या है ये आप सब भली भांति जानते हैं। दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है और ये जो विश्वास है वो मैं यहां आप सभी के चेहरों पर भी साफ साफ देख रहा हूं। साथियों, भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है। हाल में ही जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरिन रेटिंग्स को ए कैटेगरी में अपग्रेड किया है। अपग्रेड करना तो खुशी की बात है लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि सौभाग्य 3 दशक के बाद आया है। 30 साल के बाद ये दिखाता है कि भारत के ग्रोथ मोमेंटम, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बीते वर्षों में किए हैं उन सबको लेकर दुनिया कितनी आश्वस्त है। और मैं फिर कहूंगा कि भारत की ये रिफॉर्म एक्सप्रेस और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। साथियों, भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले 25 अगस्त को यूपीआई ने अपने 10 साल पूरे किए हैं। 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था और मैं वेल इन्फॉर्म लोगों की बात कर रहा हूं। चेहरा याद कर लीजिए। मैं उन करोड़ों भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके तब बैंक अकाउंट भी नए नए खुले थे। उनकी तो अनेक पीढ़ियों ने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था लेकिन आज 10 वर्ष बाद देखिए वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वे भारत में

ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। साथियों, आज अकेले अगस्त महीने में ही यूपीआई से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। यानी हम यहां जितनी देर से बैठे हैं, सिर्फ 10 मिनट में ही औसतन 50 लाख से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन देशभर में हो चुके होंगे। यही इंपैक्ट है जिसके कारण फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, उन्होंने कहा था कि यूपीआई केवल टैक्स स्टोरी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल स्टोरी है। और साथियों, यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहां कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम इस सफर से संतुष्ट हो जाए? क्या भारत में फिनटेक की सफलता को ही फाइनल मान ले जाए? साथियों, पॉलिसी और गवर्नेंस से जुड़े इकोसिस्टम में मुझे अब 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और जिन्होंने भी मुझे इन वर्षों में देखा है वो जानते हैं, मोदी एक पड़ाव पर पहुंचकर जश्न मनाकर संतुष्ट होने वालों में से नहीं है। जब एक लक्ष्य प्राप्त होता है तो मैं उससे भी बड़े लक्ष्य की तैयारी में जुट जाता हूं। साथियों, आज हमारा यूपीआई कई देशों में पहुंचा है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है। अब उन देशों के पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ना हमारा अगला लक्ष्य होना चाहिए। सिंगापुर के साथ हम ये कर चुके हैं, इससे भारत और सिंगापुर के बीच ट्रांजैक्शन वैसे ही हो पा रहे हैं जैसे एक ही शहर के दो मोहल्लों के बीच होता है। यही कनेक्शन हमें अन्य देशों, अन्य बाजारों में भी बिल्ड करना है। इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। जहां भी भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, जहां भी भारत बड़े पैमाने पर ट्रेड करता है, दुनिया का जो भी देश हमारे साथ चलने को तैयार है, हमें उन सबको जोड़ने के लिए काम करना होगा। साथियों, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विदेशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और दुनिया में सबसे अधिक भारतीय ही विदेश से पैसा भेजते हैं। लेकिन आज उस पैसे का एक हिस्सा ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला जाता है। यूपीआई भारतीयों को इसमें भी बचत दिला सकता है और पैसा तेजी से भारतीय परिवारों के पास पहुंच सकता है। साथियों, आज आप भारत में कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं? यह सिस्टम उन स्टैंडर्ड्स पर चलता है जो कहीं और डिजाइन किए गए थे। हमने उन स्टैंडर्ड्स और रूल्स को अपनाया जो दूसरों ने बनाया था।

उस समय हमारे पास अपना कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब हमारे पास अपना विकल्प है। अब हम अपने खुद के रूल्स और स्टैंडर्ड बना सकते हैं और उन्हें दुनिया के साथ जोड़ सकते हैं। मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है कि आप ये कर सकते हैं। साथियों, टेक्नोलॉजी इंक्लूजन का सबसे प्रभावी टूल है और यूपीआई ने करके दिखाया है। जब फिनटेक की बात आती है तो इसका यूनिक फीचर ही वहां पहुंचने का होना चाहिए जहां ट्रेडिशनल मॉडल नहीं पहुंच पाए, जहां पारंपरिक बैंक नहीं पहुंच पाए, जहां बैंक ब्रांच नहीं पहुंच पाई। यूपीआई ने बैंकिंग व्यवस्था को उस स्थान, उस व्यक्ति तक पहुंचा दिया है। साथियों, आज फिनटेक बाजार का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पेमेंट्स का है, लेकिन अब हमें यहां से नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है और तेजी से जाना है। अब फिनटेक मार्केट में पेमेंट्स के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन का हिस्सा भी बढ़ना चाहिए, इंश्योरेंस का हिस्सा बढ़ना चाहिए, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और पेंशन का हिस्सा बढ़ना चाहिए। साथियों, मैं समझता हूं फिनटेक देश की उस ताकत को उभार सकता है जो अभी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मॉडल्स की रीच से बाहर है या उस प्रकार से एड्रेस नहीं हो पा रही है। विकसित भारत के लिए इस ताकत का उभार बहुत जरूरी है। साथियों, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये हम सभी पीएम स्वनिधि की सफलता से देख ही रहे हैं। हमारे स्ट्रीट वेंडर्स शहरों की रीढ़ है, लेकिन ये देश के बैंकिंग सिस्टम से, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से बाहर थे। पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है। इसलिए सरकार ने स्कीम को 2030 तक बढ़ाने का फैसला भी लिया है। साथियों, पीएम स्वनिधि को यह सफलता हासिल ही नहीं होती अगर यूपीआई ही न होता। इस स्कीम की सफलता में यूपीआई की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसी अनुभव से सीखते हुए हमें फिनटेक की ताकत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ाना है। मैं आपको कैपिटल और क्रेडिट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। एक बहन है जो छोटी दुकान चलाती है, उसको हर दिन डिजिटल पेमेंट मिलता है। अब उसकी इनकम और खर्च में एक क्लियर पैटर्न दिखता है, उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। वो उस लेवल से आगे बढ़ चुकी है जहां कम कैपिटल भी काफी था। अब उसे अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए सामान चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए और इसके लिए थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है और उस बहन का बिजनेस अभी भी इतना छोटा है कि ट्रेडिशनल क्रेडिट मॉडल उसको एफिशिएंट सर्विस नहीं दे सकते। इस प्रकार के बिजनेस हैं जिनकी जरूरतों को फिनटेक एनालाइज, एंटीसिपेट और एड्रेस

0: बिजनेस कर सकते हैं और ऐसे बिजनेस की संख्या बहुत बड़ी है। साथियों, टेक्नोलॉजी हमें ऐसे बिजनेसेस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करने और उनके लिए क्यूरेटेड मॉडल डिजाइन करने में बहुत काम आ सकती है। मेरा मानना है कि फिनटेक का नेक्स्ट चैप्टर यही लिखा जाएगा। हमने पेमेंट्स में स्पीड और स्केल दिखाई है, अब हमें नॉन पेमेंट्स ट्रांजैक्शन का शेयर बढ़ाने में मदद करनी होगी। जैसे कोई डिलीवरी पार्टनर है या अपना कोई छोटा मोटा काम करने वाला व्यक्ति है, वो हर महीने कमाता है लेकिन उसे सेविंग्स और पेंशन प्रोडक्ट जैसी सर्विसेज तक एक्सेस चाहिए। ऐसे लोगों की जरूरतों को फिनटेक एड्रेस कर सकता है। ऐसे ही फिनटेक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और अन्य फाइनेंशियल सर्विस तक भी एक्सेस आसान बना सकता है। ये सब भी उतने ही सरल, सहज और सुलभ हो सकते हैं जितना आसान आज QR कोड से पेमेंट करना है। साथियों, 21वीं सदी का पहला क्वार्टर खत्म ही हो चुका है, अब हम साल 2026 में है। अब दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इंपैक्ट में कैसे बदलें, और इसके लिए मैं चाहता हूं हमारी फिनटेक कंपनियां साथ मिलकर कुछ टास्क अपने लिए सेट करें। और इसके लिए मैं कुछ सुझाव भी आपके बीच रखना चाहता हूं। पहला, हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। दूसरा, हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तीसरा, हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है। और चौथा, हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके। अगर हम इन कसौटियों पर खुद को कसेंगे तो भारत का फिनटेक सेक्टर असंख्य पॉसिबिलिटीज का गेटवे बन सकता है। हमारे पास अनुभव भी है, उसे जमीन पर उतारने का तरीका भी है, इसलिए हमें तेजी से काम करना है। साथियों, डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है। इसी आग्रह के साथ आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के 7वें संस्करण के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री का संबोधन।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नए संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और

0: विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai this evening.
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in the last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be a new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities. The 4-day Global Fintech Fest 2026 is being held in Mumbai from today till 11th September. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Colombo today on a 3-day visit to Sri Lanka aimed at deepening bilateral defence and maritime cooperation. Mr. Singh was warmly welcomed at Bandaranaike International Airport by Sri Lankan Deputy Minister of Defence Aruna Jayasekara and Indian High Commissioner to Sri Lanka Santosh Jha. During his visit, the Defence Minister will hold talks with the Sri Lanka's leadership on various issues to further strengthen bilateral ties in mutually beneficial areas, including a strong maritime and defence partnership. Russia today said that it welcomes any peace efforts by India to end the Ukraine conflict, noting that Moscow's strategy aligns closely with New Delhi's position for a resolution through dialogue and diplomacy. Kremlin spokesman Dmitry Peskov made the remarks while addressing media at a virtual briefing in New Delhi this afternoon ahead of the BRICS summit. Mr. Peskov said they know the position of India on the Ukrainian conflict and to a great extent it corresponds with their own position because they do want the solution to the Ukraine conflict by peaceful means and Russia is open for this process. He said Prime Minister Narendra Modi

0: Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar. Aur hamare saath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain desh ke jane mane अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
0: वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा.
2: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 23,635. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन, इनॉग्रेट्स एंड डेडिकेट्स टू द नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 35,000 करोड़ रुपीज इन गुजरात. Says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई गिरावट. सेंसेक्स 550 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी 23,635 दर्ज हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया. कहा, स्वदेशी उन्नत ट्रेन और मेट्रो कोच का उत्पादन कर भारत वैश्विक निर्माण हब के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आइए अब शुरू करते हैं घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन आज बिकवाली की गई और प्रमुख सूचकांक इस वर्ष जून के मध्य के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आकर बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 555 अंक यानी 0.73% नुकसान के साथ 75,578 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 144 अंक यानी 0.61% घाटे के साथ 23,635 दर्ज हुआ. हालांकि विस्तारित बाजारों में लिवाली कहीं अधिक तेज देखी गई सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप

0: 100 और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.2% लाभ में रहा।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन टुडे, एंडिंग एट द लोएस्ट लेवल सिंस मिड जून। The Sensex declined 555 points or 0.73% to end at 75,578, while the Nifty shed 144 points or 0.61% to settle at 23,635. However, in the broader market of the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 and the Small-Cap 100 indices gained 0.2% each. Earlier, the markets opened lower and remained under pressure throughout the session as Brent crude prices edged closer to the $100 per barrel mark, heightening concerns over inflation and broader economic uncertainty.
0: नजर डालते हैं सेंसेक्स में शामिल कंपनियों पर जिनके प्रदर्शन में कहीं गिरावट कहीं तेजी देखने को मिली। सबसे पहले अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियां, ICICI बैंक को आज 2% का घाटा हुआ। एक्सिस बैंक के शेयरों में 1.7% की गिरावट आई। अल्ट्राटेक सीमेंट 1.2% नुकसान के साथ बंद हुआ। उधर लाभ कमाने वाली कंपनियों में सम्मिलित रही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे 1.5% का फायदा हुआ। अदानी पोर्ट्स के शेयरों में 1.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 0.8% लाभ के साथ बंद हुए।
1: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द BSE 14 आउट ऑफ 28 सेक्टर एज्ड डाउनवर्ड। अमंग द टॉप अंडर परफॉर्मेंस, इंश्योरेंस एज वेल एज टॉप 10 बैंक्स फेल 1%, प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स ड्रॉप्ड 0.9% एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लॉस्ट 0.8%। इन कॉन्ट्रास्ट, कैपिटल गुड्स एडवांस्ड 1.3%, Power gained 0.7% and healthcare as well as industrials added 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 2,009 advanced and 216 remained unchanged.
0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 34 पैसे कमजोर हुआ, 94.83 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कुल मिलाकर ठीक ठाक गिरावट हुई और जून मध्य के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है बाजार, किस अर्थ में ले रहे हैं कारोबार को?
2: देखिए मनोज जी, एक तो ये बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग मैं कहूँगा, क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो अनसर्टेनिटीज हैं, वो वापस फिर एक हाइटेंड मोड पर हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उसमें कोई ऐसा चिन्ह नहीं आ रहा है जिससे कि हमें लगे कि शांति किसी एजेंडा पे हो या कुछ उसका वजूद हमें नजर आए, तो जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस एस्केलेशन में है। और जब क्रूड प्राइसेस एस्केलेशन में है तो उसका सीधा असर जो है पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर आता है, भारत के ऊपर आता है और जो भी इसके इम्पोर्टर हैं उनके ऊपर आता है। ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर ही बहुत काफ़ी असर होता है। तो उससे के मद्देनज़र मैं ये समझता हूँ कि जो अभी मार्केट में जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ रहा पिछले कुछ सेशंस में, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट बुक किया अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए कि ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी दिशा नहीं मिल रही है कि कोई पीस की वार्ता आगे कोई किसी एजेंडा में हो। तो एक तो ये, दूसरा जो एक एक जो इन्फ्लेशन को लेके कि जो इन्फ्लेशन अभी आने वाले टाइम में या तो राइज कर सकता है या फिर उसी जो हायर स्टिकी जोन में रह सकता है, जैसे कि यूएस का इन्फ्लेशन है 3.4% पे, तो उनके टॉलरेंस लेवल से काफ़ी ज़्यादा है, जिससे फेड आने वाले टाइम में क्या डिसीजन लेगा वो एक अनसर्टेनिटी जो है इन्वेस्टर्स के माइंड में है, जो भी कुछ ही दिनों में हमारे सामने आएंगे उनके रिजल्ट, जो भी फेड डिसीजन लेगा। और तीसरे नंबर पे जो एक एक ऐसा जो अनुमान था कि बहुत जल्दी मार्केट्स में एक तेजी आएगी, जब पीस हो जाएगा, जब कुछ ऐसी वार्तालाप होगी, तो वो सभी चीज़ों के ऊपर कोई ऐसा विचार नहीं।
1: सो व्हाई डिड द मार्केट फेल टू फाइंड सपोर्ट despite select resilience in mid-cap and defensive sectors?
2: Mr. Lake, because people are booking their profits at this juncture. अपना

0: वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीन अहम हिस्सों को देश को समर्पित किया, जिससे फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क का काम पूरा हो गया और अब ये चालू हो गया है। इस अवसर पर एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने 2800 किलोमीटर से अधिक लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने को 21वीं सदी के भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि और देश की बदलती हुई कार्य संस्कृति का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है और अपनी खुद की उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे नेटवर्क में 50,000 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच और 2.5 लाख वैगन जोड़े गए हैं। प्रधानमंत्री ने चिप टू शिप लोकल प्रोडक्शन के दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए कहा कि देश के भीतर एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर सप्लाई चेन बनाई जा रही है, जिसमें हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर भारी समुद्री शिपिंग तक सब कुछ शामिल है।
1: लेट्स टेक यू लाइव वंस अगेन टू मुंबई where the Prime Minister is now addressing the gathering at the Global FinTech Fest 2026.
2: तीसरी बार सरकार बनने से लगी थी और ये हैट्रिक आप सभी के बीच आने से जुड़ी है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगातार ये मेरा थर्ड ईयर है। ये हैट्रिक बताती है कि विकसित भारत के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका काम कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, हर बार जब मैं यहां आता हूं तो मुझे पहले से ज्यादा युवा दिखाई देते हैं, पहले से ज्यादा एनर्जी अनुभव होती है। मुझे पॉसिबिलिटीज का दायरा एक्सपेंड होता दिखता है। ये साफ साफ लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ड्रीम्स और बोल्ड हो रहे हैं और इसलिए विकसित भारत के फ्यूचर को लेकर मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है। साथियों, फिनटेक की इस एनर्जी के बीच ही मुंबई में सांस्कृतिक ऊर्जा भी इन दिनों चरम पर है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है। हमारे यहाँ हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। मैं गणपति बापा को नमन करते हुए आप सभी को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री तीसरी बार पहुंचे और उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए नए विकसित हो रहे भारत के भविष्य के बारे में थोड़ी सी जानकारियां दी। हम समझना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन किस रूप में एक विश्व समुदाय को आपस में नज़दीक लाते हैं और ये जो फिनटेक फेस्ट है वह क्या आकार लेगा हमारे आर्थिक तंत्र को, वैश्विक आर्थिक तंत्र को क्या योगदान देगा।
3: देखिए मनोज जी, जो फिनटेक है वो हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और वी आर प्राउड के हम भारत पूरे ग्लोबल लेवल पे लीडर हैं। हमारी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वी आर नंबर वन। 20 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं एक महीने में, एक बहुत बड़ी बात है जिसमें जो बड़े कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी पीछे हैं। तो ऐसे जो सम्मेलन है इससे एक तो हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो अप्रोच है वो पूरे विश्व में उजागर होती है कि भारत में किस तरीके की डेवलपमेंट्स हैं और भारत इन इन चीज़ों में आगे अपनी लीडरशिप बना के रखे हुए है। और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है, जो हम विकसित भारत की तरफ जो बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, जो अभी हमारे पास 20 साल और है हमें बड़ी ऊर्जा के साथ काम करने के, तो ये जो सेक्टर है चाहे वो फिनटेक है, एआई है, डिजिटलाइजेशन है, तो ये सभी सेक्टर जो न्यू इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं ये पूरी इकोनॉमी को गति दे रहे हैं, उसकी स्पीड को

0: तेज कर रहे हैं, जो हमारे जिसकी वजह से हम देखिए अपना जो जीडीपी है 7.8% जी, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज पहले होती थी उनसे कहीं ज़्यादा हमारा जो ग्रोथ है वो कहीं आगे निकल गया है। अब चाइना का ग्रोथ है वो 4-4.5% के आसपास अटका हुआ है, एंड वी आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारी जो रफ्तार है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो ऊर्जा है वो पूरे विश्व में अभी विजिबल है।
1: सो इन नटशेल, GFF 2026 सीक्स टू बिल्ड ऑन इंडियाज लीडरशिप इन डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मूव फ्रॉम पोटेंशियल टू इम्पैक्ट।
2: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आपको एक बार फिर से श्रोताओं को लिए चलना चाहेंगे गुजरात, जहाँ वडोदरा में एक बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। हमारा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आज देश को समर्पित कर दिया गया। इसके 3 अहम हिस्से हैं, वो भी पूरे हो गए। किस रूप में ये सहायक होगा माल परिवहन के लिए, और कैसे यह जो लॉजिस्टिक्स का हमारा क्षेत्र है उसे कह लें योगदान देने वाला है?
0: देखिए मनोज जी, मैं इन कॉरिडोर्स को फ्रेट कॉरिडोर्स ही नहीं, मैं इनको ग्रोथ कॉरिडोर्स मानता हूँ जी। ये भारत की ग्रोथ कॉरिडोर्स है। जब भी कोई नए कॉरिडोर्स आते हैं तो भारत की जो ग्रोथ है और भी गतिमान हो जाती है। तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, जिस तरीके से हमारी जो रफ्तार है जैसे मैंने पहले बताया, तो और सुदृढ़ होगी और हमारी ग्रोथ जो है उसको आगे सस्टेनेबल बनाने में ऐसी हमें ग्रोथ कॉरिडोर्स और चाहिए जो हमें और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे।
2: यहाँ पर एक और तथ्य हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और खुद की उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच तक बनाने लगा है। किस रूप में देख रहे हैं आप हब बनने की स्थिति?
0: जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए अभी हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर मोबाइल एक्सपोर्ट्स में हो, वी आर द लीडिंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो जो पहले हम नेट इम्पोर्टर होते थे, जो मोबाइल नाम का नामो निशान नहीं था, हम सब कुछ ही 100% हम इम्पोर्ट कर रहे थे, तो अभी हम उसके बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग की ही देन है कि हमारी जो ऊर्जा जो हमारी मेक इन इंडिया से हमें मिली, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और PLI स्कीम, सभी ने हमें इतना सपोर्ट किया और हमारी जो विश्व में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं अभी वो विख्यात होने लगे हैं, जिसे हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बताते हैं कि आवर प्रोडक्ट्स आर इन डिमांड सिग्निफिकेंटली एट द ग्लोबल लेवल। जो एक्सपोर्ट्स है वो 13-14% के ऊपर ग्रो करना और मर्चेंडाइज 17-18% पे ग्रो करना एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम वैल्यू एडेड देखें, जो पहले चाइना कहीं आगे होता था तो अभी चाइना भी उससे पीछे है। हम मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है उसमें वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से ऊपर है, 2 percentage point ऊपर हम जो ग्लोबल लेवल का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से ऊपर है। तो स्वाभाविक है कि हम एक आने वाले टाइम की एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं।
2: आइए आगे बढ़ते
3: हैं। बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे,
2: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA के रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में देश में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री वार्षिक आधार पर 17.51% बढ़कर 24,23,201 इकाई पर पहुंच गई। CNG हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक अगस्त महीने में ही EV जैसे वैकल्पिक ईंधन वाले पैसेंजर वाहनों की बिक्री पहली बार पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से आगे निकल गई और बाजार में ट्रांजेक्शन हुए 41.95% रही।
3: यानी
2: पेट्रोल वाहनों की हिस्सेदारी
3: हम यहाँ जितनी देर से बैठे हैं
2: जो ग्राहकों की पसंद में बड़े बदलाव दिखाता है। अगस्त में पैसेंजर वाहनों की बिक्री 16.14% बढ़े, जबकि कमर्शियल वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 14.45% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही उल्लेखनीय बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में ऑटोमोबाइल की बिक्री शहरी इलाकों की तुलना में बेहतर रही है। शहरी बिक्री में 15.17% की वृद्धि हुई, जबकि आलोच्य अवधि में ग्रामीण बिक्री वार्षिक आधार पर 19.79% बढ़ी है। यहाँ पर बहुत संक्षेप में आपको आपसे ये प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या दिखा रहे हैं आंकड़े, खासतौर से जो ईवी की बिक्री बढ़ी है और ग्रामीण भारत में वाहनों की बिक्री अधिक बढ़ रही है?
0: देखिए मनोज जी, जो पैसेंजर व्हीकल्स है ये एक डिमांड इंडिकेटर है, जिसे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड कितनी है। और सेकंड जो रूरल डिमांड, जैसे आपने बताया कि जो रूरल एरियाज में इनकी डिमांड और तेज गति से बढ़ी है, तो आने वाले टाइम में ये एक इंडिकेशन है कि हमारी जो डिमांड ट्रैजेक्टरी है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जो हमारा जो ग्रोथ है वो भी सुदृढ़ रहेगा। सो दिस इज इंडिकेटिंग

0: पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इन द कमिंग टाइम्स।
1: हाँ ये लिए चलें श्रोता हो आपको वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई बाजार जहां जापान का निक्की 225 1.7% बिक वाली के दबाव में नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.6% की कमी आई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो इस वर्ष पिछली तिमाही की तुलना में अप्रैल जून तिमाही में जापान के जीडीपी में 0.4% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वार्षिक आधार पर देश की अर्थव्यवस्था में इस दौरान 1.4% की वृद्धि हुई। यहां पर अगले सप्ताह के जापान में केंद्रीय बैंक की बैठक होने वाली है, साथ ही जापान के जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, ये जो तेज वृद्धि यानी इसे हम कहें या किन अर्थों में ले।
0: देखिए जापान ने भी ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए बहुत एफर्ट किए हैं और उसी की वजह से ग्रोथ बड़ा स्ट्रांगली विजिबल हुई है, रिबाउंड हुई है
1: जी।
0: और जो मेजर्स लिए गए हैं मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है जापान की बहुत सुदृढ़ रहेगी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी
1: जी।
0: सो दिस इज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो।
2: Canada's retaliatory tariffs on $28 billion worth of U.S. goods took effect today with duties of up to 50%. The tariffs target products including steel, furniture and clothing, while fresh fish and lobster were removed following pressure from Canada's seafood industry. The move comes after trade talks between Canada and the United States collapsed last week with no sign yet of negotiation resuming anytime soon. The global crude oil prices climbed to multi-week highs as Houthi attacks on Saudi energy facilities intensified concerns about disruptions in global oil supplies. Brent crude was trading 1.7% up at $98.67 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.4% up at $93.90 per barrel when reports last came in. What do you expect, Dr. Sharma, now that the oil is now towards $98?
0: Yes, considering the very tense situation in the Strait of Hormuz, so I believe the prices will remain elevated. Though the volatility will come in the coming times, the prices are in the rising mode at this juncture.
1: ये किस रूप में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा बहुत संक्षेप में?
0: देखिए जहाँ तक क्रूड का सवाल है, अगर वो $100 या इसके नीचे रहता है तो हमारी ग्रोथ के ऊपर कोई असर आने की संभावना नहीं है, हमारी ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी। हाँ अगर इसमें बहुत तेज एस्केलेशन आती है तो हमारी ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती है।
1: आइए श्रोताओं आपको लिए चलें सर्राफा बाजार। भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% बढ़त के साथ 1,53,077 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी भी थोड़ी सी तेज थी। इसके मूल्यों में 0.9% की बढ़ोतरी थी और इसके भाव 2,33,826 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। और बस अब यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको डॉक्टर शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद देना
0: जी। शुक्रिया मनोज जी,
2: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 550 points, Nifty settles at 23,635. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat, says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. And global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
5: நேரம் 11:38:48. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசை.

0: ஒழித்த பாடலின் நிறைவு பெற்றது இன்று திரைகானம். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को कटक में सरला साहित्य संसद की ओर से कलिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में देवी सरस्वती की चांदी की मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। इस मौके पर न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि इंसान जिंदगी में भले ही कितनी भी दूर क्यों ना चला जाए, लेकिन उसकी जन्मभूमि की मिट्टी ही उसकी यादों, पहचान और सांस्कृतिक विरासत को आकार देती है। एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय दल को नई दिल्ली से जापान के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरिरंजन राव और दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोग

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है. मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं.
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है. एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है. अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले.
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए. भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है. श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया. प्रधानमंत्री ने कहा, 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया. इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है. श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं. श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही. रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रक्षा मंत्री का श्रीलंका के रक्षा उपमंत्री अरुणा जयसेकरा ने बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अफगानी की. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 2 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए. कानून मंत्रालय के अनुसार 3 न्यायिक अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है. गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 1 वकील और 1 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है. महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है. नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रहेगा. श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं. दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है. रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है. रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है. रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है. मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भी बारिश की संभावना है. अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए. तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया. वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता. उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया. स्वाति ने व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता. इसके साथ ही ये समाचार

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இந்த நினைவில் நின்றபை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है. मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं.
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया.

0: गया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात की। रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रक्षा मंत्री की श्रीलंका के रक्षा उपमंत्री अरुणा जयसे ने बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 2 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कानून मंत्रालय के अनुसार 3 न्यायिक अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 1 वकील और 1 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के 3रे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी बारिश की संभावना है। विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai.

மீறி போச்சு பீச்சு பக்கம் காரை பார்த்து நாளாச்சு.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास

योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी योग जारी रहेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। श्री सिंह के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान एडमिरल स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा कराईकल में भी बारिश की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सिर्फ एक रुपए में। हर शुक्रवार होगा एक नई मूवी का प्रीमियर बिना किसी एड ब्रेक के 9 से 16 नवंबर के बीच।
1: मंगवाओ और लगाओ, दर्द से छुटकारा पाओ।
2: चाहे आपकी उम्र जो

0: இனியராகம் நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
2: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष

0: हित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। श्री सिंह के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान एडमिरल स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest GFF 2026 in Mumbai yesterday. The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, "The world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities."
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
1: The 4-day Global Fintech Fest 2026 is being held in Mumbai till the 11th of September. The revamped Nehru Planetarium, a premier public outreach facility under the Prime Minister's Museum and Library, PMML, was inaugurated in New Delhi yesterday. The upgraded facility aims to strengthen science communication, promote astronomy awareness, and enhance public engagement.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत ने तुरंत सहायता पहुंचाई है और भारत राहत और बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी नेपाल का सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर

0: सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचे श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। श्री स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 12,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से लागू होगा और इसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा पुदुचेरी और कराईकाल में भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has called for expanding the global reach of India's Unified Payments Interface, that is UPI. He urged the fintech sector to connect the country's homegrown retail payment network, UPI, with payment systems in more countries and help the Indian diaspora reduce remittance costs. Mr. Modi stated this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai yesterday. The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded last month. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be new goal to reduce transaction costs in remittances. Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. The 4-day Global Fintech Fest 2026 is being held in Mumbai from the 8th to 11th of September. The revamped Nehru Planetarium, a premier public outreach facility under the Prime Minister's Museum and Library PMML, was inaugurated in New Delhi yesterday. The upgraded facility aims to strengthen science communication, promote astronomy awareness, and enhance public engagement. The newly added facilities include a dedicated reading room library, upgraded exhibition and projection systems, and improved visitor amenities, providing a more accessible and enriching educational experience. The Union Ministry of Women and Child Development will launch the 9th National Nutrition Month 2026 in Varanasi today. Union Women and Child Development Minister Annapurna Devi will launch the campaign at the Rudraksh Convention Centre in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. The campaign will be conducted throughout the month of September in Aganwadi centres, schools, panchayats and homes across the country with community participation. This year, the theme of National Nutrition Month is Our Aganwadis, Our Responsibility. Uttar Pradesh government has enhanced the honorarium for Aganwadi workers and helpers. State government has issued an order in this regard. As per the order, an additional increase of 4,000 rupees per month has been made in the state share of Aganwadi workers and 2,000 rupees per month in the state share of helpers. Following this revision, Aganwadi workers will receive a total honorarium of 12,000 rupees per month, while helpers will receive 6,000 rupees per month. The enhanced honorarium will be effective from this month and will be paid next month, that is October 2026.